वह लह पावे, राजस तामस सतकाल समावे, ससियर कह कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस भवन पताल समाई, खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाई, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बुझ हो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन ज्योत तिहो लोई, कर कर वेख करता सोई, गुरते दिसै सो तिस ही माही, मनमुख भूले।

आप अपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: वार वार
1: दिन सरहण तिवें संसार आवा गौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे सिष्ट साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सोजी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै।

काय परमे भूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे तां दर सूझै एक

कह कोई साहिब की सेवक रहे सरनाई आपे बख्शे दे वड्याई किसते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका हो।

हार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर सिउ रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंदन वेल सुंदर देख फिर साधारिया।

हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यो जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वड भाग गुर पूरै वेखा लिया नानक।

अरे कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम, जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम। हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम, गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिवलाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम, जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम, अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम। गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम, जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिवलाई राम। हम मूर्ख मुगद मलाया हर कृपा तारी राम, तन तन गुरु साबास है जिन हों मैं मारी राम। जिन वड भागियां वड भाग है हर हर उर तहार।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया पया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मिल संते आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लज्जाई है चरण राज मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मरण मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक।

चित्तर चंचल अनक पाव दिखावे होए तीठ मीठी मनह लागे नाम लैण ना आवे ग्रह बनह तीरे बरत पूजा बाट घाटे जोहनी नानक पयम पै दया धारहु।

मुख हो नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन

यो सुख सागर प्रभ भेटे है, नानक सुखी होत एहो जी यो संत। सुख सागर प्रभ पाई है, जब होवे पागो राम। मानन मान वंजाई है, हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान पचातुरी, दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पवो सरनाई राम राय, थिर हुए सुहागो राम। सो प्रभ ताज कत लागी है, जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवे ज्ञान मती, दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ।

हम श्री गोपाल ना उच्चरह बल गये दो चार नरसना राम। प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम। भ्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम। लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम। चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं बिख त्यागण राम। ईत ऊत नह डोलिय हर सेवा जागण राम। नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम। बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम। गुण गोविंद।

हम नानक प्रभ शरणागती जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किछ दीना राम बड़ भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम बहां

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास पिन्हड़े अप

हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजै पाए बलावल ना होवे मन मुख थाए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है बिचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

चलह सतगुर पाई जिनके हृदय हर वसै हम रूप गुआई गुण रवह गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाई इस जुग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चेतलाई नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाई महला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द न लगो पाऊ हम रोग कमावना हत दीर्घ बहु सुआउ मन हट कर्म कमावनी फिर जोनी पाई गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लए मलाई नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाई पौड़ी सब वडियाइयां हर नाम विच हर गुरमुख त्याई जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास तां सर्ब सुख पाई गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाई जिस पूर्व हो लिखिया सो हर गुण गाई सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रभ मेल मलाई सतगुर का दर्शन सफल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाई गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाई हर रस पी संतोख होआ सच वसिया मन आई सच त्याए अमरा पद।

चित लाए, हर सुख पल्लर त्यागया, नाम विसार दुख पाए, मन मुख ज्ञानी अंधले, जन्म मरह फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध ना होनी, अंत गया पछताए, जिस कर्म हुए तिस सतगुर मिले, सो हर हर नाम त्याग।

पूरै भाग सतगुर पाईऐ जे हर प्रभ बख्श करे उपावां सिर उपाऊ है ना उपरापत होए।

गुणी निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमे जाए अभमान नानक नदरी पाईए अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किछ हर करावे सो ओहि करह सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले कर।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान ना लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै, करमी सतगुर भेटियै ता सच नाम लिव लागै, नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाम मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार, भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार, दूजे पाए सूते कबहु ना जागहै, माया मोह प्यार। नाम ना चेतै शब्द ना विचार है, इहो मनमुख का विचार, हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन, सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा, होर तहट ना वथ ना विसाहु। भगत जना को सन्मुख होवै, सो हर रास लए वे मुख।

आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मुनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश हो।

सबना का अपमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे विमुख होवे सो फिरे भ्रिष्ट थान जन नानक कै वल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पए।

आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लई।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे, आवह ना जाहे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे, पुत्र कल

कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर रामे रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अजो बिकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, पवजन निद भारी। राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाऊ। बिखै बिखै की बासना, तजी नह जाई। अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जोबन गया, किस

दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नाख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करहो मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बलावल चरण कमल जा कह हृदय बस है सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निदता कै सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब एह मत जो सब मह पे

लावल बाणी रविदास भगत के एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किस नहीं

की कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाउ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा, ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजै, ता हर निःफल सब काल गवासा, मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा, जो संसार के कटम मित्र भाई दी सह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा, जित दिन उनका सवाओ होए ना आवै, तित दिन नेड़े को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा, इसका प्रवासा क्यों कीजै मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा, हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा, जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का

प्रशांत शीतल माने अपना, जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना, रहाउ जा मैं सब निदान, सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रतना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओह उत्तम संत भयो बड बडना, किस जन की वडियाई हर आप वधाई, ओह कटै ना किसै की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावह मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजै, नित बसह हृदय हरी मोहे चरना, गोंड महला चौथा, जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

नाम हरि भज सदा दीवान। जो हर महल पावै गुरबचनी, किस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दीसह मन मेरे सब बिन सजाहे, ज्यो रंग कसुंभ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगाह पावै तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस, चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावै सो प्रधान। ज्यो चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा, त्यों सत संगत मिल पतत परवान।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइए, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइए, मेरे मन हर जप हर नित पड़इए, हर बिन को मार्ग वाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़इए, रहाउ हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरई है, हर एक को बोले हर एक बुलावे, गुर पूरे हर एक दिखइए, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरई है, निह कपट सेवा कीजे हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पइए, जिस दे वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है, जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद ले छड़ई है, गोंड महला चौथा।

मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर, जन नानक की हर आस पुजावहु, हर दर्शन शांत शरीर, शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाओ, सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता, ओपत करता परलो करता, व्यापत करता लिपतो करता, भक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुरु प्रसाद नानक समदृष्टा, गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो संपाए ले, पग धारह सास लेख लै, तो उदरह हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले, अपने रह

राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किस भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजे निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कै परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमख जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

आय काटे अवकट जात कत है सहाय रहाउ रंक राहु जाक एक समान कीत हस्त सगल पुराण बियो पूछना मसलत तरे जो किस करे सो आपे करे जाका अंत न जान सकोए आपे आप निरंजन सोई आप अकार आप निरंकार काट काट काट सब काट आधार नाम रंग भगत भय लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अगाए नानक तिन जन लागे पाए गोंड महला पंजवा जा कै संग इहो मन निर्मल जा कै संग हर हर सिमरन जा कै संग किल बिख होहे नास जा कै संग हृदय परगास से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाइए जा कै नीत रहाउ जा कै मंत्र हर हर मन वसै जा कै उपदेश परम पौ नसै जा कै कीर्त निर्मल सार जा की रेन बांछै संसार कोट पतत जा कै संग उधार एक निरंकार जा कै नाम आधार सर्ब जिया का जानै पेओ कृपा निदान निरंजन देव पार ब्रह्म जब पये कृपाल तब पेटे गुरु।

गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्याप, गुर का सेवक दह दिस जाप, गुर की महिमा कथन न जाय, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी।

पातार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटै बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिए संसार वडभागी पाइए पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन हर गुण रमत नाही जम पंथ महाबीचार पंच दूत मंथ तो सरनाए पूर्ण नाथ जनते अपने को दीजे हाथ रहाओ सिमरत शास्त्र।

अलख अपेव प्रेम भगत जिसे आपे दे जग मह विरले के मोहे निर्गुण गुण किशु नाही सर्व निदान तेरी दृष्टि माहे नानक दीन जाचे तेरी सेव कर कृपा दीजे गुरुदेव गुण महला पंजवा संत का लिया तरत बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसे दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा तिसका पतन होए जिस कौ राख सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक कौ उपजी प्रतीत मन मुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहि आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्श।

साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राख राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जपै निरंकार निंदक कै मोहे लागे शार राम कवच दास का सन्नाह दूत दुष्ट तिस पोहत नाहि जो जो गर्भ करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए जो जो शरण पया हर राय सो दास रखिया अपने कंठ लाई जे को बहुत करे अहंकार ओह खिन महरो ताखा कूनाल है पी साचा होवन हार सदा सदा जाई बलिहार अपने दास रखे कृपा तार नानक के प्रभ प्राण आधार गोंड महला पंजवां।

मराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरिया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले। भरिया हुए सो कबहू ना डोले गोंड। नरु मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हों बलिहारे आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट इसे तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरे तरे ध्यान वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद। गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहावै।

पे ना जानो बाप बीतला बाहा दे रहाउ नर ते सुर होए जात निमख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुर्ग को जीत्यो सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैक टकावो मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जाने उदरे नामे की निज मत ए गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाए अकेली पानिया बिन मीन तलप है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बादशाह सूतला थन चोखता माखन कूटला नाम देहो नारायण पाया गुर भेटत अलख लखाया जैसे बिखै हित पर नारी ऐसे नामे प्रीत मरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देओ जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम ले उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमह रहाउ हर हर नाक्ष हरे प्राण अजय मलकियो बैकुंठ थान सुआ पढ़ावत गनका तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपटह भरी सिमरन द्रोपद सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली कौ दिया प्रणवै नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गोंड पैरों भूत शीतला धावै खर बाहन उहशार उडावै हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो रहाउ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू डमकावै महामाई की पूजा करै नर सह नार हुए अवतरै तू कहियत ही आद पुहानी मुक्त की बरिया कहां छपानी गुरमत राम नाम गहो मीता प्रणवै नामा इउं कह गीता बलावल गोंड आज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे रहाउ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी।

निंदक का प्रगट पाहारा निंदक सोद साद बिचारिया कहुरव दास पापी नरक सदारिया जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना कोई नाम जपै जप माली लागे तिसै ध्याना कब ही किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गति हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाउ कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले लोभी जियड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरन लखाए मंडल मह आए जीवन साजह माई एक चले हम देख है स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जे तू देव है अंते होए सखाई राम कली महला पहला सर्ब ज्योत तेरी पसर रही जह जह देखा तह नरहरी जीवन तलब नवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाओ जह पीतर घट पीतर बसिया बाहर काहे नाही तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेड़ा आपे दूर आपे सर्ब रहया भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तह रहया समाई अंतर सहसा बाहर माया नैनी लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेहगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वस है कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लह जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कह किन बिद सागर तरिय जीवत्या नह मरिय रहाओ दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेसा दोए पट जड़ी माया जल खाई पानी कर बांधिया सत कै आसन पुरख रह किंते नामा अंत ना जानिया तुम सर नाही अवर हरे ऊचा नहीं कहना मन मह रहना आपे जाने आप करे जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक कह आसा भीतर रह निरासा तो नानक एक मिले इन बिद सागर तरी है जीवत्या इयों मरी है रहाओ दूजा राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत झोड़ी मंगण कै ताई भीख्या नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाउ पानी प्राण पवन बंद राखी चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे सिद्ध साधक अर जोगी जंगम पीर पुरस बहु तेरे जे तिन मिला ता कीरत आखा ता मन सेव करे कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या करे राम कली महला पहला सुनमा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नह डोले ऐसी जुगत जोग कौ पाले आप तरे सगले कुल तारे सो अवतूत ऐसी मत पावे अहंस सुन समाध समावे रहाउ भिख्या पाए भगत पै चले हुए सो तृप्त संतोख अमुले ध्यान रूप हुए आसन पावे।

जीवन दाते, हर संत पगी ले पावे, हों काटो काट बाद सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे, राम कली महला चौथा, जे वड पाग हो वह वड मेरे, जन मिलदिया ढिल ना लाइए, हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड पागी तित नवाइए, राम मुको हर जन कार लाइए, हों पानी पखा पीसो संत आगे, पग मल मल तूर मुख लाइए रहाओ, हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे, जो सतगुर मेल मलाइए, सतगुर जेवड़ अवर ना कोई, मिल सतगुर पुरख त्याइए, सतगुर सरन परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाइए, एक अपने सवाए आए बह गुर आगे, जो बगल समाध लगाइए, बगला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखू मुख लाइए, नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइए, राम कली महला चौथा, सतगुर दया करहो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लग है गुर चरनी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिन अवर ना कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ, मेरे एक खिन प्राण ना रह बिन प्रीतम, बिन देखे मरह मेरी माया, तन तन वड भाग गुर सरणी आई, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जो पाया, नाम हीन फिर है से न कटे, तिन कस कस नक वढाया, मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी, हृदय अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया, राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उर तारे, जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम सुमारे, राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड भाग हमारे रहाओ, कोट कोट ते तीस त्यावह, ताका अंत ना पावह पारे, हृदय काम कामनी मांगह, हृद मांगह हाथ पसारी, हर जासु जप जप वड्डा वडेरा, गुरमुख रखो उर तारी, जे वड भाग होवह तां जपिए, हर पहो जल पारी उतारी, हर जन निकट निकट हर जन है, हर राखै कंठ जन तारी, नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारक हर प्रित पारी, राग राम कली महला पंजवां घर पहला।

सुख होई। जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाऊ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई। जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना। जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो हो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवे निध पावहु, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहु गुरमुख लिव लावहु, आत्म चीनो पाई, निकट कर जान हो सदा प्रभ हाजिर,

पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत न आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ ना कतहू जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा राम कली महला पंजवां तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाही।

गहिरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया।

तुने अगाजा निर्त करे कर मनुआ नाचे आनी घुंघर साजा राम को नृत्यकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चंद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे पुंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत।

कोई बाछ पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा पवन मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदाई परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध एहो तौ रचन रचिया कर।

किस गुर को हो सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ। महिमा जा की गहर गंभीर,

सर्व प्रतिपाल नानक रातो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा मुख ते पड़ता टीका सहत हृदय राम नहीं पूर्ण रहत अपदेश करे कर लोक दरडावे अपना कहया आपना कमावे।

कार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला भवन बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान

सतूठा घट घट रमैया तिन ही दीठा राम कलही महला पंजवा पंच शब्द तह पूरन नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद केल करह संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बै

पंजवां जो किछ करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते चूका ठहराया सत माए ले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन मेहमानी महापुरख का संग पया रहाउ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई भला जह राखै सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अठ सठ तीरथ जह साध पग तरह तह बैकुंठ जह नाम उच्चरह सर्व आनंद जब दर्शन पाईऐ राम गुणा नित नित हर गाईऐ आपे घट घट रहे आपे आप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट खलाने।

हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा हुए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावै जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई।

सो परवान जिस हृदय वसाई, नानक ते जन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवां, गौ कर पकरी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओह चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उधार। रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओह सेवक सेवा करे।

सो भूखा रह, इस संग राचै सो कछु न लह। इस त्याग सत संगत करै, वड भागी नानक ओ तरै। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख। पूर्ण पूर रहया प्रभ।

परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे, निरपहो निरंकार दातार, तिसस्यो प्रीत न करे गवार, सब साहा सिर साचा साह, वे मोहताज पूरा पातशाह, मोह मगन लपटयो भ्रम गृह, नानक तरिया तेरी मेहर, राम कली महला पंजवां।

सगल अपावना चालह संग भव जल तरिय प्रभ कै रंग देही धोए न उतर मैल हम मैं व्यापै दुबदा फैल हर हरे औखद।

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह राचै हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत, भौ भागा निरभौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवै अखुट भंडार, नानक भगत सो है।

का पूता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत नहीं हर पारा वार रहाऊ कीर्तन निर्मोल गहीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी

संकरा नहीं जानह पेव, खोज तहारी देव, देवियां नहीं जानह मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोड़ आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद।

मत सार जित हर सुमरीजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपया गुरु।

दान ता दरगाह पावे मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर पए दयाल नानक दास निहाल राम कले महला पंजवा होवै सोई भल मान अपना तज अभमान दिन रैन सदा गुण गाओ पूर्ण एही सवाओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भव जले उतर है।

नानक पाया हो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवां दलाब दे सवार जाहि ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लए छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोहे सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एह कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाऊ, जो जो करे सोई मान ले हो। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाण।

उधरे गुण गाय, गणन ना जाई टीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करे, नानक जिसह प्राप्त करे, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुर देवा, कीमत किस कहन ना जाई, साचे सच अलख।

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापयो थाप नहारा, किस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कले महला पंजवा, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

खुद खुदाए वड बेशुमार ओं नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जगजीवन माधो पौ भंजन रिदमाहे अरा

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध प्राणी जन का सफल दर्श डीठा।

सूके काष्ट हरे चलूल ऊचे थल फूले कमल अनूप अग्न नवारी सत गुर देव सेव के अपनी लायो सेव किरत कणा का करे उदार प्रभ मेरा है सदा दयार संत जना का सदा सहाई चरण कमल नानक सरनाई राम कली महला पंजवां पंच सिंह राखे प्रभ मार दस बिघियाड़ी ले।

हर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए तृण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रग

कृपा करै साध संग सो पव जल तरै अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उजल साचै दरबारी आनंद करहो तज सगल विकार नानक हर जप उतरोह पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बैसंतर भागै माटी को जल दह दिस त्यागै ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जीव आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन मह किरत पया पूर्व कमाणी छोडह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा त्रिशना बूझे बहुत हया असाद रोग उपजे।

नानक दास कंठ लाए राखी, कर कृपा पार ब्रह्म माया, राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई रहाव, दर्शन पेखत हुए निहाल, जाकी तू

मिन सह अभमान एक तिहाई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहा गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गावहु राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाईऐ आवागौण मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल मह होए निवास संत संगत मह होए उदार नानक भवजन उतरस पार राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ एक अरादो साचा सोए जा की शरण सदा सुख होए।

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओट ले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्वाणा रहाउ बड भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल कौ अंत काल में नारायण सुध आई जां गत को जोगी सर्वांशत सो गत शिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कश विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम का देखो अपै दान तेह दीना राम कली महला नौवा साधो कौन जुगत अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उज रहियो है बूझै नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कै सिमरै पावै पद निर्वाणा भई दयाल कृपाल संत जानू

इसबा सुर मह निमक एक उर धारै जम को त्रास मिटै नानक तेहे अपनो जन्म सवारै राम कली महला नौवां प्राणी नारायण सुध ले छिन छिन औध घटै निसबासुर बिरथा जात है दे रहाउ तरनापो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहु नहीं समझै कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै।

नानक कहत चेत चिंता मन हुए है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चांद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे। जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार। हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाउ। कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा। दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा। जे को

वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदै मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावै है।

दुबदा दुख भागे, धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ। गावह गीत ना चीनह आप, ज्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए। भस्म चढ़ाए करह पाखंड, माया मोहे सह जमदंड। फूटै खापर भीख न पाई, बंधन बांधिया आवे जाए। बिंद न राख है जति कहावह, माई मांगत त्रै लभावह। निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला।

कैसे उतर सपारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ निद तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाइए रहाऊ, माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए, नाम रतन निर्मोलक हीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हऊ मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का पौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गाते अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी,

तत्परुता जग सूता मारे आवे जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए अनहद शब्द बजे दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहिया निर्बानी सुन समाद सहज मन राता ताज हों लोबा एको जाता।

पूजह सैला, बिन हर राती मैलो मैला, गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ, मुक्त प्राण जप हर किरतारथ, वाचै वाद ना बेद विचारै, आप डुबै क्यों पितरा तारै, कट कट ब्रह्म चीनै जन कोए, सतगुर मिले तां सोझी होए, गणत गणिय सहसा दुख जीय, गुर की सरन पवै सुख थीय, कार्य अपराध सरन हम आया, गुर हर भेटे पुरब कमाया, गुर सरन ना आईय ब्रह्म ना पाईय, भरम भलाईय जन्म मर आईय, जमदर बहंत हो मरे बिकार, ना हृदय नाम ना शब्द आचार, एक पांडे पंडित मिस्र कहावे है, दुखदा राते महल ना पावे है, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मध्य को जन आपार, एक बुरा भला सच कै, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेकै, गुरमुख विरली

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

जय चार सपव नसंघासन पी जय न्योली कर्म खट कर्म करी जय राम नाम बिन बिरथा सास लीजै अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै अंतर चोर क्यों साध लीजै गुरमुख होए काया गढ़ लीजै अंतर मैल तीर्थ परमीजै मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै किरत पया दोष का कौ दीजै अन ना खाहे देही दुख दीजै बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं चीजै मनमुख जन्म जन्म मरीजै सतगुर पूछ।

सुंदर दुंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रवीजै, नानक नाम मिलै कृपा प्रभु की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही है सो प्रभु ते होई, जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान त्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादुर लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई,

मन तन निर्मल अभिमान अभिवा कर्म मिले पावे सच नाम तुम शरणागत रहो स्वभाव तुम ते उपजो भगति पाओ जप जापो गुरमुख हर नाम हौ मैं गर्भ जाए मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द न

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत भी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका यह सतगुर देख दिखाई जिन की खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चै तखत सच महली बैठे निरपौ ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख है सतगुर शब्द विचारी सिंह सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पांच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योति अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसने औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपुरी

पाखांडे औदु गुरमुख शब्द बिचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जात सत शब्द बिचारी शब्द मरे मन मारे औदु जोग जुगत बिचारी माया मोह भवजल है अवधु शब्द तरे कुल तारी शब्द सूर जुग चारे औदु बाणी भगत बिचारी एहु मन माया मोहया औदु निकसै शब्द बिचारी आपे।

आसन बैस जोगी ता तेरी कल्पना जाई काया नगरी मह मंगन चढ़ है जोगी ता नाम पल्ले पाई इत किंगरी ध्यान ना लागे जोगी ना सच पल्ले पाए इत किंगरी शांत ना आवे जोगी अभमान ना विचों जाए पाओ पाओ दोए पात लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी गुरमुख हो वह ता तंती वाजे इन बे

योग जुगत एव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन

धर्म पलाय उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागे सो गत पाए शब्दे सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी केता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हो गुर सलाही सदा अपना

हर की पूजा दलंब है संतोह, कहना कछु ना जाई। संतोह गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाउ। हर बिन सब किश मैला संतोह, क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होए, पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोक संतोह, मनमुख थाई ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतोह, एह पूजा थाई पाई। पित पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई। बिन नावे होर पूज ना होवी, परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतोह, राम नाम लिव लाई। आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करह पर भिद नहीं जान है, दूजे पाए मल लाई। गुरमुख होए सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावे संत हो, अंते नाम सिखाई। अपना आप ना पछाण है संत हो, कूड़ करह वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गुआई। जिने अंतर शब्द आप पछाण है, गत मित तिन ही पाई। एह मनुआ सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मलाई। सुन सुन गुरमुख नाम वखाण है, सत संगत मेला।

भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस हुए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजन पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही परपूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोजह से ही पावह और फूट मुए अहंकारी।

अहंकारी जिच्चर अंतर सास तिच्चर सेवा कीच जाए मिलिया राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटो बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से ही जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से ही मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुर ते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

कर मारे, गुर बोहित वडभागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली महला पंजवा, काहू बिहावै रंग रस रूप, काहू बिहावै माए बाप पूत, काहू बिहावै राज मिलख वापारा, संत बिहावै हर नाम अधारा, रचना साच बनी सबका एक तनी रहाऊ, काहू बिहावै वेद अरबाद, काहू बिहावै रसना साध, काहू बिहावै लपट संग नारी, संत रचे केवल नाम मरारी, काहू बिहावै खेलत जुआ, काहू बिहावै अमली हुआ, काहू बिहावै पर दर्ब चुराए, हर जन बिहावै नाम त्याय, काहू बिहावै जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन धार जात बिहाए, संत बिहावै कीर्तन गाए, काहू बिहावै दिन रहन चालत, काहू बिहावै सो पेड़ मालत, काहू बिहावै बाल पढ़ावत, संत बिहावै हर जस गावत, काहू बिहावै नट नाटक निरते, काहू बिहावै जिया एह हिरते, काहू बिहावै राज मह डरते, संत बिहावै हर जस करते, काहू बिहावै मता मसूरत, काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोदत जीवत, संत बिहावै

पंजवा दावा अगन रहे हर बूट मात गर्भ संकट ते शूट जा का नाम सिमरत पहु जाए

का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

ज्ञान अंधेर बंजाई, करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई, एक शब्द लिवलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ्यो, साच शब्द बने आई, जन्म मरण का सहसा चूका, बहुर कतहु ना

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहन

रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

संतोह शब्द धरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारी।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया।

भगत हां तेरी विखव मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना थन्यो हो तिक्खी वालो हो निक्की एक मार्ग जाना गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वास ना समाणी कह नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित्र होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित्र माता पिता कटंब सहत सियो पवित्र संगत सबाइया

जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया, कर्मी सहज ना उपजै, विण सहजै सहसा ना जाई, नह जाई सहसा कितै संयम, रहे कर्म कमाई, सहसै जीव मलीन है, कित संयम धोता जाई, मन तो वोहो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाई, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, इहो सहसा इव जाय, जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा।

जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनसा सच समाणी, जन्म रतन

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो हो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सत

वरदाता जे अग्न में है आहार पहुंचावी उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावी अपनी लिवे आपे लाई गुरमुख सदा संभाली है कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर में है तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करता खेल रचाया जां तिस पाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसर मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक बिललाई ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपिए विचो आप जाई।

मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर तेरा स जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हरे आपे

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, ते कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दे बद्रिष्ट हो।

सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वडाणी तां की गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचै सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाओ नव निद तिसदा अंत ना जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया इहो साचा सोहिला साचै कर गावहु गावहु ता सोहिला कर साचै जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जा तुद भावे गुरमुख जिना बजावे इहो सच सबना का खसम है।

संतापी उत्तरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावै आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावै तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाणै अपनै बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावै तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावै सतगुरु प्रतख हुंदै बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जियो, सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आन निवाया, हर गुरह भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो, राम कली महला पंजवां शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोया कट कट सोया, हत अमृत प्रिय गूड़ा, नाल होंदा लह ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा, माया मद माता होची बाता, मिलन न जाई परम तड़ा, कहो नानक गुरबिन नाही सूजै, हर साजन सब कै निकट खड़ा, गोविंदा मेरे गोविंदा,

सुगड सुजान। सुगड सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणु, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे दी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याइए सब किश पाइए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुण।

हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है। राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है। उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा। नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा। किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने। देख चलत दयाल सुन भगत बखाने। जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा। सर्ब जाचक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने। बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया। जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया। आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया। बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया। राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद। नित उठ गाइय संतन कै किल विख सब दुख बनासन। हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अम्यो पीजै। रैन दिनस अराधिय जोग दान अनेक क्रिया। लग चरण कमल है सादी है पाओ भगत दयाल मोहन। दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर। त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन। भगत गावह गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे। पाए सुख कनेरे राम सुख निधान मिलया दुख हरिया। कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा। हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै। हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा। पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना। मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो। अंत न पाइए गुनिए राम दयाल दुख हर सरन दाता। सगल दुख निवारनो मोह सोग विकार बिखड़े। जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे। कर कृपा सब रेन थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै। नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना। अपनी चरणी लाए राम आठ पैर अपना प्रभ सिमरह। एको नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे भवजल। रहे आवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन। प्रभ लगा मीठा पाना सब इच्छ पुन्नी आस पूरी। मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मेले। फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा संत सलोक। चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधी है विपत निवारन राम। संत प्रभ विपत निवारनो तिस बिन अवरना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो।
जल थल महियल कूर रहया, एक निमख मनहो ना विसरै, गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसरै, कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो, बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच, नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो, सदा सदा बल जाए।

यो बल जाए नानक पुरख पूरन फिर जाका सुहाग जियो सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ शंत सगल इच मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो अंद भयावड भागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो ग्रह लाल आए पुरब कमाए ताकि उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण भणा आपे मलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मह रहया समाए जियो राग राम कली महला पंजवा रण झुंझनड़ा गाओ सखी हर एक त्याव हो सतगुरु तुम सेव सखी मन चिंदियाड़ा फल पावो राम कली महला पंजवा रुति सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बांछो साधा धूर आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर किलविख काटन भय हरन सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याए संत जस गाव हो वडभागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुति महा मूर्त घड़ी गुण उचरत शोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिन्नी एक मन त्याया सफल जन्म भया तिनका जिन्नी सो प्रभ पाया पुन दान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो सलोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदभावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परहो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत शंत रुत सरस बसंत माह चेत वसाख सुख मास जियो हर जियो नाह मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाह निचल आनंद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुल्या वड भाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक सरण तेरी मिति जम की त्रास जियो सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ सरनागती जाका वड प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवै मरत हावै महागर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावै संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजन है जन्म जन्म के मीत चरणहा दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन पादवे आनंद जियो धान उन्नम उठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहया।

ग्रह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जी ओ बिनवंत नानक हर।

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार ढोल श्रृंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो। सलोक हर तन पाया सुहागनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धारकंत जियो। सलोक संत सहाई जी के पवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिलना मन ते बिसरै तज आप सरनी परे चरनी सर्ब गुण जगदीसरै गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद कौ आदेश जियो मिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली।

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार शैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रिभुवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साच संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भये मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुखाया आपे गुरमुख आपे देवै आपे अमृत पियाया एको एक कह सब कोई हूं मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणै यों कर महल संजापै प्रभ नेड़ै हर दूर ना जानू एको सृष्ट सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों गहराखो अफर्यो तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विभूते इब तब फिर पछत

होई। गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार, अगमय अगोचर कीमत नहीं पाए, ता मिली है जान ले मलाय। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिया नीत, काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल, कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करतै करनी कर पाई, जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई, खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया, खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए, खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया, अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया, गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास, गया न आवै आए न जाय, गुर प्रसाद रह लिवलाय, गगन अगम अनाथ अजोनी, अस्थर चीत समाध सुगोनी, हर नाम चेत फिर पवह न जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी, घर दर फिर थाकी बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे, केते मात पिता सुत धियां, केते गुर चेले फुन हुआ, काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल, गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ करै मह पाया, मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै, गुरमुख तोल तलावै तोलै, गुरमुख आवै जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार, नानक गुरमुख पावै पार, चंचल चीत न रही ठाई, चोरी मिर्ग अंगूरी खाई, चरण कमल उर तारे चीत, चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोय, चेतह एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय, मुक्त भया पत स्यों घर जाय, सीजै दे खुलै एक गंड, छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जाण, बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, सीजै जोबन जरुआ सिर काल, काया सीजै भई से बाल, जापै आप प्रभु तिहु लोई, जुग जुग

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझे सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, झूर मरे देखे परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

बूझै, आपे समझै आपे सूझै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटे नेहो के बोलह सही, टूटे बाहा दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटे गंठ पड़े विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवे टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताई, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपने, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपने, निरपव नाम बखान, ढूंगर वास तिखा कनी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखे सब कोई, जय पावे तै दे, गुरु द्वारे देवसी, तिखा नवारे सोई, टंडोलत टूंडत हौ फिरी, तह तह पवन करार, पारे तहते तह पई, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौ बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाव, जिन नाम दिया तिस सेवसा, तिस बलिहारै जाऊं, जो असारे सो ढासी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हो।

टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वियोग विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संयोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

मुए माया किसे ना साथ, हंस चले उठ डुम्मणु माया भूली आथ, मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल, मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल, मेरी मेरी कर मुए विण नावे दुख पाल, गण मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण, नानक सच्चे ना

ही पुन आए गए पछताहे, लख चौरासी मेदनी कटै न वधै उताहे, सेजन उभरे जिन हर पाया,

अपना तन मन आगे देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण झुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमाव है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोड़े मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय भावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वण तृण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाई रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़ै रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़ै गारड़ तुम सुनो हर वस्तै मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम भलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै कौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणे अपना खूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हों मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपी है हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर ना सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाय बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाय पांदा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाय विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाय मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाय मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काय पांदा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारु मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भवी है सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हो संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आई हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारू, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नै साणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

जाने साचा, नानक साचे पावे साचा। किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख नवासी। किस वक्खर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी। गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वक्खर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी। चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया। चित बिद आसा मनसा खाई, चित बिद जोत निरंतर पाई। बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक साचा करो विचार। सतगुर कै जन्मे गवन मटाया, अनहत राते इहो मन लाया। मनसाया सा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारनहार। आद को कवन विचार कथियले, सुन कहां घर वासो। ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले, घट घट कवन निवासो। काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरभउ घर जाइए। सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बहराइए। गुर कै शब्द हउमै बिख मारे, ता निज कर होवै वासो। जिन रच रचिया किस शब्द पछाण, नानक ताका दासु। कहां ते आवै कहां एहो जावै, कहां एहो रह समाई। एस शब्द को जो अर्थावै, तिस गुर तिल ना कमाई। क्यों तत्तै अवगत्तै पावै, गुरमुख लगै प्यारू। आपे सुरता आपे करता, कहो

वह गत मित शब्दे पाई आद को विस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियली घट घट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

जी जुगत सच जाने सोई आप मेट नरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया एक एको सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किश सूझै।

एक माया झूठे आवह ठवर ना पावह, दूजे आवागौण भया आवागौण मिटै गुर शब्दी, आपे परखै।

आय गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तारनहारा हम मैं दूजा पर हरिया मन मुख भूलै जम की कान पर कर जो है हाने हान मन मुख भरम पवै बेबान वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबान नानक साच रते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अकाड़ कढ़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साच समावै गुरमुख परचै वेद बीचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर बिद जानी गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै बीचार गुरमुख निबहै सब परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द अचार शब्द भेद जाणै जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख धरती साचै साजी तिसमह ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाय साच रतो पत स्यो घर जाय साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साच समावै गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि गुरमुख सारे अपसर बिद जानै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारी नानक गुरमुख शब्द निसतारी नामे राते हों मैं जाए नाम रते सच रही समाई नाम रते जोग जुगत बीचार नाम रते पावह मूख द्वार नाम रते त्रि भवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान बीचार बिन नावै बोलै सब वेकार नानक नाम रते तिनको जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाय जोग जुगत सच रह समाय बारह मह जोगी परमाई सन्यासी छे चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजै लागे देखो हृदय बीचार नानक वड्डे से वड भागी जिन्नी सच रखिया उर धार गुरमुख रतन लह लिवलाय गुरमुख परखै रतन सुभाय गुरमुख साची कार कमाय गुरमुख साचे मन पतियाय गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागै सहज ध्यान गुरमुख पावै दरगाह मान गुरमुख पौ भंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराई नानक गुरमुख मेल मलाय गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावै घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भरमै आवै जाई बिन

आपना पुन्नंग घट घट सुन का जाने पेव आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागै नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझै चोटा खाए जम दरबादे कोई न राखै बिन शब्द नाहीं पत साखै क्यों कर बूझै पावै पार नानक मन मुख ना बूझै गवार कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार सतगुर भेटै मुख द्वार तत न चीनै मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावै मान साच वखर धन पल्लै होए आप तरै तारे पी सोए सहज रत्ता बूझै पत होए तां की कीमत करै ना कोय जह देखा तह रहिया सुमाए नानक पार परै सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है इस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस थिर रही है कित भोजन तृप्तासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवै तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावै गुरमुख होमै विचों खोवै तव नानक सहज समावै इहो मन निश्चल हिरदै बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रि भवन जोत सो शब्द लह।

सच सफाकै, सच रपै रंग कबहू ना जावै। जां एहो हिरदा देह ना होती, तो मन कै ठै रहता। नाभ कमल अस्थंभ ना होतो, ता पवन कमन घर सहता। रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई। रखत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई। वर्ण भेख असरूप ना जापी, क्यों कर जापस साचा। नानक नाम रते बैरागी, इब तब साचो साचा। हिरदा दे ना होती ओदू, तौ मन सुन रह बैरागी। नाभ कमल अस्थंभ ना होतो, ता निज कर बस तौ पवन अनरागी। रूप ना रेखिया जात ना होती, तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार। गौन गगन जब तब है ना होतो, त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार। वर्ण भेख असरूप सो एको, एको शब्द वडाणी। साच बिना सूचा को नाही, नानक अकथ कहानी। कित कित बिद जागे उपजै पुरखा, कित कित दुख बिन सजाई। हम मैं विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरै दुख पाई। गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै, हम मैं शब्द जलाई। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, साचै रहै समाई। नामे नाम रहै बैरागी, साच रखिया उर धारी। नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै, देखो हृदय बीचारी। गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई, गुरमुख सच बाणी प्रगट होई। गुरमुख मन भीजै विरला बूझै कोई, गुरमुख निज घर वासा होई।

गुरमुख जोगी जुगत पछाण है, गुरमुख नानक एको जाण है। बिन सतगुर सेवे जोग ना होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई। बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई, बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई। बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार, नानक बिन गुर मुआ जन्म हार। गुरमुख मन जीता हूं मैं मार, गुरमुख साच रखिया उर धार। गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार, गुरमुख दरगाह ना आवै हार। गुरमुख मेल मलाए सो जाने, नानक गुरमुख शब्द पछाने। शब्द काल बेड़ा सुन तू औदू, बिन नावे जोग ना होई। नामे राते अन दिन माते, नामे ते सुख होई। नामे ही ते सब प्रगट होवे, नामे सूझी पाई।

होई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होई। कहया शब्द ना मानी हऊ मैं छड्डै ना कोई। गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होई। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करी पौड़ी। दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझह बिचारा। सब किश तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै। माया नू फिरै तपा सदावै परमे भूला सब तीर्थ गह। ओ तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा सो तपा जे इहो तप काले सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा इहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान पौड़ी। रात दिन स उपायन संसार की वर्तन गुरमती घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिण। सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भण। शब्दे ही सोजी पई सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए ना आखियन। जिनके चित में भरम तिस दै दित्तै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद। ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन। जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन। पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन पौड़ी। अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव। घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव। सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सच्चो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

लोभ रत विचों जाए। ज्यों बैसंतर धात सुध होए त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया तां बनिया शिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया तां सौंपिया भगत भंडार।

नानक गुरमुख उबरे सच्चा शब्द सुवाहि पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदे सब ताव है आप निश्चल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निज कर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। सलोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरतै सच नानक हुक्म जो बुझै सो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरै हुक्म ना बुझै सच नानक हर का भाणा मन्ने सो भगत होए बिन मन्ने काचन काच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार होए थाओ कथाओ ना जाननी उने अंतर लोभ विकार।

कोई कड्डो एहो विचार, सतगुर मिले तनाम दड़ाई, सब किल वेख कटन हार, नाम जपे नामो अरादी, तिस जन को करहो सब नमस्कार, मल कूड़ी नाम उतारियन, जप नाम हुआ सचियार, जन नानक जिस दे एह चलत है, सो जीवो देवन हार पौड़ी, तुद जेवड़ दाता नाही किसे आख सुनाई है, गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाई है, रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है, जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है, घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसे प्याई। श्लोक महला तीजा, बाबाणिया कहानिया पुत सपुत करेन, जे सतगुरु भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन, जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद, बचन सब सृष्ट करेन, सच्चै लाए सच लगे सदा सच समालेन, नानक आए से प्रवान भये जे सगले कुल तारेन। महला तीजा, गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन, ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन, कूड़ कसत कमावंदे पर निंदा सदा करेन, ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन, नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन, पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिष्ट सब कीती, एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गूती, गुरमुख सदा त्याई है अंदर हर प्रीति, जिनको पोतै पुन है इन बात सपीती, नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई। श्लोक महला पहला, सती पाप कर सत कमाही, गुर दीखिया घर देवन जाहि, स्त्री पुरख है खटिया भाव, भावें आवो भावें जाओ, शास्त्र वेद न माने कोए आपो आपे पूजा होए, काजी होए कै बह न्याई, फेरे तस्बी करे खुदाई, बड्डी लै कै हक गवाए, जे को पुछे ता पढ़ सुनाई, तुरक मंत्र कन हृदय समाई, लोक महावह चाड़ी खाई, चौंका दे कै सुचा होए, ऐसा हिंदू वेखो कोए, जोगी गिरही जटा बेपूत, आगे पाछे रोवह पूत, जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सिर शाही पाई।

कै घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पढ़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धूता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो किस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

संताप औ हट पट्टण में है भीख्या करे सो अवधूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाली काया की अगन ब्रह्म पर जाली सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपै थम अहनस अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान।

जाई काहे भीखिया मंगण जाई पौड़ी। हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे बधाता मनुख हर मंदिर की सार ना जा।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूह केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार उस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे उस पिछे डुब दे पी तरना, नानक ज्योतिष पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहे आ सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे, सब किस हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। श्लोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे घर आया अजय सो रोवे भीख्या खाए। ऐसी दरगाह मिले सजाए रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया रोवे दह सिर लंक गवाए। जिन सीता आंदी दौरू वाए रोवे है पांडव पये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर रोवे जनमेजा खोए गया। एकी कारण पापी भया रोवे है सेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़ रोवे है राजे कन पड़ाए। कर कर मांग है भीख्या जाए रोवे है किरपन संच है धन जाए। पंडित रोवे है ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेखे लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है अवर कारा सब बाद, नानक मन्या मन्नी है बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै गुण माही सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया। सब किसे आपे आप है आपे दे वड़ियाई। श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रतना।

हे ना आखियन जिन मुख लोइन नाहि अंधे से ही नानका खसम हो कुथे जाहि महला दूजा साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई जितै सो वस्त्र ना जापई आपे वरतौ जान नानक गाहक क्यों लय सकै ना वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए पौड़ी काया अंदर गढ़ कोट है सब दे संतर देसा आपे तारी लाइन सब मह परवेसा आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा गुरसेवा ते जानिया सच प्रगटियेसा सब किस सचो सच है गुरसोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावन रात आहाड़ देहो काम क्रोध दोए खेता लब वत्र दरोग बियो हाली राह कहेता हल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए नानक लेखै मंगिया औत जनींदा जाए। महला पहला। पौ भोए पवित पानी सत संतोख बलेद हल हले मी हाली चित चेता वत्र वक्त संजोग नाउ बीज बख्शीस बोल दुनिया सगल दरोग।

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर बरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम

एक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है महला पहला। नानक कहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल, मनुआ अंध ना चेतई पड़े अचिंता जाल। नानक चेत अचेत है चिंता बद्दा जाए, नदर करे जे अपनी ताय आपे ले मलाए पौड़ी। से जन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता, गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता। सब किस घर ही माहे है वडभागी लीता, अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता। आपे मेल मलायन आपे दे बुझाई, श्लोक महला पहला। वेल पुंजाया कत बनाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया, लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सूई।

सुई धागा गंढै माह पाख केहो चलै नाही घड़ी मोहत किछ हन्नै सच पराणा हुवै नाही सीता कदे ना पाटै नानक साहिब सचो सच्चा टिचर जापी जापै महला पहला सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर।

कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मेले प्रीतम मोहे गुर पूरै मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया श्लोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दा तार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पात रखै आप सो पवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै श्लोक महला पंजवा धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रत्ते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुरपूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसमै पाणिया श्लोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सज्जनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़े रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन कड़न समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ
हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक धर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन कियां इच्छा पूरियां पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवां मन मुखां केरी दोस्ती

बरे जो सतगुर सरन परे पौड़ी जो रते दीदार से सच हाक जिन्नी जाता खसम क्यों लभे तिना खाक मन मैला वेकार होए संग पाक दिसे सच्चा महल खुले भरम ताक जिसे दिखाले महल तिस ना मिले ताक मन तन हुए निहाल बिंदक नदर झाक नौ निद नाम निदान गुर कै शब्द लाग किसे मिले संत खाक मस्तक जिसे भाग सलोक महला पंजवा हरनाखी को सच वैन सुनाई जो तौ करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो छबीली फिर तैढा मन साधारण।

सब काज सुवारिया जिस तू आवह चित्त सो परवान जन जिस तू आवह चित्त बहुता तिस धन जिस तू आवह चित्त सो वड परवारिया जिस तू आवह चित्त तिन कुल उधारिया।

हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता तोह कुटे क्या फल पावे हंसा विच बैठा बग न बनी नित बैठा मच्छी नो तार लावे जां हंस सभा विचार।

पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिस का कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हों मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निर्भउ सो भई।

तेरा अंग सो निर्मली हूँ निर्मला, जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है, जिसनो तू प्रभु वल तिस क्या मोह शंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। सलोक महला पंजवां। ओ कृपाल स्वामी मेरे संता संग विहावे, तुदहो भुले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चुकन हावे। महला पंजवां। सतगुर सिमरो अपना, घट अवकट घट घाट,

साहिब सब सहनो कृपाल संभाली साहिब साहिब बिरथा कोई न जाय जे आवे तुदे आही। सलोक महला पंजवा दूजा तिस ना बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दा तार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक अर

पाई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाई पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कणावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस

आवह वस बहुता दान दे सब को तेरा वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। श्लोक

होगा हरक आनंद हुक्मी जपै निरोधर गुरमंद हुक्मी आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए मन में लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम ते आई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे भोग पगाए दा भाणे मनह करे। भाणे

न कोई। जाचक सदा जाचोवै महला पंजवा, देह सजंदड़ी ऊण मचूणा। गुर सज्जन जियो तराया, हब्बे सुख सुहेलड़ा सुत्ता। जिता जग सवाया पौड़ी, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत। सिर शाह पातशाह निश्चल चौर छत, जो पावै पार ब्रह्म सोई सच न्याऊ। जे पावै पार ब्रह्म

रंग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवा आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए नानक जित आहर जग उदर है विरला बूझे कोई पौड़ी वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर जिसै जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता श्लोक महला पंजवा सतड़े बाजार सोहन विच वपारिये वखर एक अपार नानक खट्टे सो धनी महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किस हू के नाही जिन एहो रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफले ओ बिरख सुहावड़ा हर सफले अमृता मन लोचै उन मिलन को क्यों वंजै किता वरना चेहना बाहरा ओह अगम अजिता ओह प्यारा जी का जो खोले पिता सेवा करी तसाड़िया मैं दस्य हो मिता कुर्बानी वन्या वारने बले बल किता दसन संत प्यारिया सुनो लाए चिता जिस लिखिया नानक दास तिस नाओ अमृत सतगुर दिता श्लोक महला पंजवा कबीर धरती साधकी तस्कर बैसह गाहि धरती भार ना ब्यापई उनको लाहू लाहि महला पंजवा कबीर चावल कारनी दुख को मोहली लाए संगक संगी बैसती तब पूछे धर्म राय पौड़ी आपे ही वड परवार आप एकातिया

आप वरन्या धन सो तेरा थान जिथे तू उठा धन सो तेरे भगत जिन्नी सच तू डिठा जिसनो तेरी दया सलाहे सोए तुद जिस गुर भेटे ना।

जो नर पीर निवाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी संग सवनड़ी दे बिरले के पाइन जिन्ना प्यारे ने पौड़ी जप तप संयम दया धर्म जिस देहे सो पाए जिस बुझाए अग्नि आप सो नाम ते आए अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए साध संगत कै आसरै प्रभ स्यो रंग लाए औगण कट मुख उजला हर नाम तराय जन्म मरण भौ कट्यों फिर जोन ना पाए अंध कूप ते काढ़ियन लाड़े आप फड़ाए नानक बख्श मलायन रखे गल लाए सलोक महला पंजवा महब्बत जिस खुदाए दी रत्ता रंग चलूल नानक विरले पाई है तिस जन कीम ना मूल महला पंजवा अंदर विद्दा सच नाई बाहर पी सच डिठो नानक रव्या हबथाई वण त्रिण त्रे भवन रोम पौड़ी आपे की तो रचन आपे ही रत्या आपे होयो एक आपे बहु पत्या।

दलाली सतगुरे आखै सच्चा करे सा बात हुवै दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्लै होए जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चै बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवागौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप आपै सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम्मत।

क्या सलाही सच्चे पातशाह जां तू सुगड़ सजान दान जे सतगुरु भाव सी सो सत्ते दान नानक हमदा सत्तर सिर।

ग्रहण में लो। गुर का शब्द गुड़ की नरे, तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर, काट काट कस दी नरे। कोई है रे संत सहज सुख अंतर, जाको जप तप देव दलाली रे। एक बूंद पर तन मन देव, जो मद दे कलाली रे। रहाऊ पवन चतर दस पाठी कीनी, ब्रह्म यगन तन जारी रे। मुंदरा मदक सहज धुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संयम, रव सस गहन देओ रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, एहो महारस पेओ रे। निचार धार चोवै अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे। कह कबीर सगले मद छूछै, एह महारस साचो रे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, पौ पाठी मन धारा। सुख मन नारी सहज समानी, पीवै पीवन हारा। औधू मेरा मन मतवारा, उन मद चढ़ा मद रस चाखिया। त्रे भवन भया उजियारा, रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी। पियो महारस भारी, काम क्रोध द्वे किए जलेता। छूट गई संसारी, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत। सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मत माता। उचक ना कबहू जाई, तू मेरो मेर प्रभत स्वामी।

कै कर जानी। हम निर धन ज्यो एहो धन पाया, मरते फूट गमानी। करै गमान चुभ तिस सूला, को काढन को नाही। अजै सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो रादे। हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

सो रन मैं जूझ बिन दागे भग जाई साधु होए सो भगत पछाने हर लए खजाने पाई कोठरे मह कोठरे परम कोठी बीचार गुरदीनी बस्त कबीर को लेव हो बस्त समार कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया फिर का सुहाग जेहे मुख बेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै जाकै पाए जगत सब लागै सो क्यों पंडित हर ना कहै काहे मेरे बामन हर ना कहै राम ना बोलै पांडे दोजक पर है रहाव आपने ऊच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जानी रहाव पवर एक पोह परस बीदा बारह ले उर धरिया सोरह मदे पवन च घोरिया आकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया धरती जल हर सो

भोगी जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेपूत चढ़ाव अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनित धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

बंधन पाया मुख तै गुरे अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मजन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाउ उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदिया ले चक्र पुवंगा पेटिया ले रायन संगा चूकिया ले मोह मै आसा सस तीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकतै बक शब्द सुनाया।

गुडी आकाश मदे परमियले पंच जनास्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो वैरागी रामह गावो गो।

चांद रहाऊगो, चांद सूरज दोए सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाऊगो। तीर्थ देखना जल मह पैसो, जी जंत ना सतावोगो। अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए, घट ही भीतर नाओगो। पंच सहाई जन की सोबा, पलो पलो ना कहावोगो। नामा कह चित हर सिहराता, सुन समाद समाओगो। माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहां ते आया। राम कोई ना किसी केरा, जैसे तरवर पंख।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेद जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तऊ ना पूजै छोड़ छोड़ रे।

जो गोदावर जाइय, कुंभ जो केदार नहाइय, गोमती सहस गऊ दान कीजै, कोट जो तीर्थ करै, तन जो हिवाले।

न हिरण हुई कैसी, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूट है, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाऊ, हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है ना नासी, कहो रब दास सब है नहीं समझस, भूल पर

साखी जागी गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै अमृत रस गगनंतर पीजै एस कला जो जानै पियो भेटै तास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रहै सो कबहो ना सोवै तीन तलोक समाध पलोवै बीज मंत्र ले।

बस कर राखै गुर की साखी राखै चीत मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत कर पल्लव साखा बिचारी अपना जन्म ना जुवै हारी असुर नदी का बंदै मूल पच्छम फेर चढ़ावै सूर अजर जरै सो निचर चरै जगन्नाथ स्यो गोष्ट करै चौ मुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्ब कला ले आपे रहै मन मानक रतना मह गुहै मस्तक पदम द्वालै मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर संख कान गाजे।

अवगणियारी पाथर पारी हर तारी संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारी हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन

पालक स्वामी हमरा कोह वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारियो प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह तूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक को दया प्रभ धारु हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जान हो हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जान हो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुऐ बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ तारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावह हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर दे उस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर पंछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भय हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कल युग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मन्नी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

भावे मन प्यास बहुत दरसावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान।

बुद्ध सियानप जित निमुख ना प्रभ बिसरावै संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावै देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावै कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवै नट नारायण महला पंजवां दुपदे

कीता, बिन सह दुख विपरीत, सब अर्पो मन तन चीत, रहाव कोई विरला आपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर भज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होहि पनीत, नानक दास बल बल कीत, नाट अष्टपदिया महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम मेरे मन तन नाम आधारी, खिन पल रह ना सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम संभारी रहाव, हर हर हर हर हर मन त्यावहु, मैं हर हर नाम प्यारी, दीन दयाल भई प्रभ ठाकुर, गुर कै शब्द सुवारी, मधुसूदन जग जीवन माधु, मेरे ठाकुर अगम अपारी, एक बिनो बेनती करो गुर आगे, मैं साधु चरण पखारी, सहस नेतर नेतर है प्रभ को,

उदर पाया। हर हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनियत मीठी, ज्यों गूंगा गटक संहारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चख है राम नामा, सब अनरस साध बिसारी, गुरमत राम नाम धन पाया।

है दह दिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हम सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवे जम काल खड़ा सिर मारी उगवे दिनस आल जाल संभाले बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरे शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर उपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खिंचा।

संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गण के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को लै बैकुंठ सधारी।

बिचारी सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना सुम्हारी जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डे पनेहारी साकत सियो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो दसिए तज साकत परे परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सुवारी गुर के बचन सत सत कर मानी मेरे ठाकुर बहुत प्यारी पूर्व जन्म परचून कमाई हर हर हर नाम प्यारी गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए फकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभु के सेवक बहुत आत्मिके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभु श्रद्धा भगत मन भावे।

एका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुचकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

जन मान प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

आप निस्तारे नाट महला चौथा राम कर कृपा ले हो उभारे जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह को हर गुर मेल सवारे साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारे मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारे नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारे श्रद्धा श्रद्धा अपाए मलाई मोह को हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संहारे पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पावहो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर समेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कन हारे साकत को अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल बिस्कारे ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड़ै बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोलै है पर उपकारी संतै संत मिलै मन बिगसै ज्यो जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं तारे अवर ना काई मैं सत

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वड भागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

राम नामे मत गुरमत राम रसाला रहाउ। गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिए हर जपमाला। जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला। तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला। कर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला। मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा मेरे मन हर भज सब किल बिख काट। हर हर उरतार्यो गुर पूरै मेरा सीस कीजै गुरवाट। रहाउ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कट काट। हर साजन मेलियो गुर पूरै गुर बचन बिकानो हट हाट। मकर पराग दान बहु किया शरीर दियो अध काट। बिन हर नाम को मुक्त ना पावे बहु कंचन दीजै कट काट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर भरम पौ भागा लज भानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे ललाट। जन नानक

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बेकार तज सब।

सलाही जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े।

काल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती रस रस चोग चुगह नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

होकर पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौं दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

एही, बिन दर्शन कैसे रहूं सनेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला। मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई। साहिब

पैर मनोआ, जपत रहा तेरा नाव, लूण हरामी नानक लाला, बख्शे हैं तुद वडियाई, आद जगाद दया पत दाता, तुद विन मुक्त ना।

अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोवें सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

पुनवासी गुरबचनी बाहर घर एको नानक भया उदासी राग मारू महला पहला घर पंजवा।

छोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम जलिया मनो विसारी।

जपियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे।

हर करे सेवक पैज रखै मेरा गोविंद सरन परे उदरे जन नानक हर कृपा धारी उर धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपियो लिबलाई साधिक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादिक रविया सरन परे जपियो ते पाई

गण गंधर बेजपयो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपयो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुरतार कृपा हर नाम दरड़ायो जन नानक नाम नया मारू महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निदान लै गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते लय छाए जिथै अवकट गलियां पीड़ियां तिथै हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुत बंदपो

सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले ढिल ना पाए, जिन हर हर नाम ना चेतेओ से भाग हीन मर जाए। ओए फिर जोन पवाई है मर जमह आवै जाए, ओए जम दर बदे मारी है हर दरगाह मिले सजाए। तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लहो हर राय, हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाई। हर जियो आप दयाल हुए जन ना

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाऊ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाई अकथ कहानी, संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी। मेरे मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी। बड़ भागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख।

भाग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा समा

नाओ। मंगत जन जाचा हर देव पसाऊ, हर सत सत सदा हर सत, हर सत मेरे मन पावे जीओ। नवे सिदर सर्वह अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होए मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जीओ। माया मोह भिकम है भारी, क्यों तरिए दुत्तर संसारी। सतगुरु बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लगावे जी।

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरपै अत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरयो बदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी।

ठाकुर सेवक को सबरे हलत पलाता, धन सेवक सफल ओ आया, जिन नानक खसम पछाता।

पतत पिए खिन पीतर महमा कथन न जाय निरपौ पये सगल पै खोए गोविंद चरण उटाई नान।

हुकम बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह एयानथ ताज सारंग थार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेव है हौ हौ करत बेहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत पर की को अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानत खतरी।

दिस ताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कै तीरथ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए राम।

राख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड़ियाई सुबा नानक।

है सुपने दाम ना छड है राज कमाए करी जिन थैली ता कै संग ना चंचल चलिया एक है प्राण पिंड ते प्यारी एक संची तज बाप महतारी सुत मीत प्रात ते गुहजी ता कै निकट न होई खलिया होए अवतूत बैठे लाए तारी जोगी जति पंडित बिचारी ग्रह मणि मसानी।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है।

सत कर्मानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी भूत अर प्रेता बहु विद जोनी फिरत अनेता जह जानो तह रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहमे मूठो बेचारा अनक दोख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक मह पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिस को होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन जिस पावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काढ़ नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतुल।

सगल ते अनु तजियो मन ते अभमानु निचल तिन का ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नान

सरन भज संग साधु भव सागर उतर है पार। मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ। जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार। गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक।

तो न वाई भैनो न पाई एको सहाई राम ही कीता जसो होवे पापा मलो धोवे सो सिमरहो प्रधान ही कट कटे वासी सर्ब निवासी।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां

यासमुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहे था शब्द लगावना।

मारू महला पहला शब्द मरे ता मार मर भागो किस पह जाऊं जिस कह डर पै भागी है।

सुभर गुण नहीं बिन गुण क्यों घर जाओ सहज शब्द सुख उपजै बिन भागा तन नाही जिनकै नाम ना मन वसै

छै सुख नहीं गाडे ला दे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे।

देख मुख तमाण तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुद भावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे

सच कार कमाई विचड़िया कहो मेल लय गुर कहो बल जाई लाले गोले मत खरी गुर की मत नीकी साची सुरत सुहावनी मन मुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरक तुरकी सच है बैसन उठना सच भोजन भाखिया कित सचै बितो सचा साचा रस चाखिया साचै घर साचै रखी गुर बचन सुभाखिया मन मुख कौ आलस घणो हाथे उजाड़ी हाथा चुगै नित चोगड़ी लग बंध बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज ताड़ी अनहत

आई नानक नाम रते से निर्मले साक्या रहे समाई मारू महला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर एहो मन अवगण बांधिया सहो दे शरीर पूरे गुर बख्शाई है सब गुनहा फकीर क्यों रही है उठ चलना बुझ शब्द विचार।

चलना मुखे अमृत नाम मेरे ठाकुर हाथ वडियाइया मिल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देखै सोई जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदया जम

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सोहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवी।

थीए, पारस संग पीजे, वन्नी साचे लाल की, किन कीमत कीजे, पेखी हाथ न लबई, तीरथ नहीं दाने, पूछो बेद पढ़ंतिया, मूठी विण माने, नानक कीमत सु

कर ही रह, ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पीटै, दुर्मत कुमन की रह, दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका, तृष्णा हुए बधेर, काची पिंडी शब्द ना चीनै, उधर भरै जैसे ढूरै, बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी, गुर कै शब्द एक लिव लागी, तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ, कोली गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र पेख पेखारी, कापड़ फार बनाई खिंथा, चोली माया तारी, कर कर मांगे जग प्रबुद्ध, मन अंधे पतहारी, परम पलाना शब्द ना चीने, जुए बाजी हारी, अंतर अगन ना गुर बिन बूजे, बाहर कुवर तापे, गुर सेवा बिन भगत ना होवी, क्यों कर कीन से आपे, निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे, अठ सठ तीरथ परम बगूचे, क्यों मल धोपे पापे, छाणी खाक बेभूत चढ़ाई,

सतावै बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवै माया का देवाना कितना मिटही हुक्म ना बूझै पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी स्त्री तज कर काम व्यापिया।

पानी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी।

उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई है अफरे उपार अफार टरे रहाऊ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करूं हरि तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ ले जग जन्मिया सिर शक्ति घर वास धरी लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरी कर्ण पलाव करे नहीं पावे एते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड कतंब स्यों प्रीत करे खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई। सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै शब्द बिचारी जियो। संजोगी तन पिर मेला होवै,

सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तमारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

धरती जा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्रब जन्म अब पायो रे मुड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यों उर जायो रहाओ।

नायायु अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सुथान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो उत्तर कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारु महला पंजवा कर अनग्रह राख लीनो पयो साधु संग हर नाम।

निच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जन वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्वस संतना की रास।

मित्र सतरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश नीका।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया। हर जस तुम संग गावना संत किरपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना। दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना। नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना। संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना। मोहे निर्गुण को कोई ना राखे संता संग सुमावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना। मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ। पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना। खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना। पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना। भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना। बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना। मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना। मिलियो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपा।

ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हों बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भव मन माही, तिस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है, जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना, जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है, जित जित लाव है तित तित लगना।

जो मन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातो करता दिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खाते अंदर

सब आपे एक कड्डे एक लहर व्यापे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे ता खसम त्याई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक को गुण गीता नित वखानिया।

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई हे। आपे रतन अनूप अमोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस बक

भये देवानी शब्द सहज रस अंतरमानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई हे आप निरालम गुरगम ज्ञाना।

संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अदली प्रभ आपे परम भेद पहु जाई है।

राई जिस बख्शे तिस दे वड्याई सब सहदाता तिल ना तमाई पारपुर धार रहया ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है क्या सलाही अगम अपार है।

जले पड़कारी, मनमुख तके कुंडा चारी, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है, साचे हाथ वडाई हे, काम क्रोध अहंकार निवारी, तस्कर पंच शब्द संघारी, ज्ञान खड़गले मन स्यों लूजै, मनसा मन है समाई हे, माँ की रकत पिता बिद धारा, मूरत सूरत

जम्मण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल बिगास हरे सरस पर,

होई, थाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नावे है, ज्यों तुद भावे तिवें चलावे है, हठ निग्रह अपतीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी,

तारी गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपह मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजै अलख अपेवा भगतां का गुण।

मन तन अर्प मिलै जग जीवन हर सिउ बणत बनाई हे। प्रभ की गत मित कोई ना पावे जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साके साहेब तोट ना दाती सगली तिन्ह अपाई है।

जावै बूझै हुकम सो साच समावै नानक साच मिलै मन पावै गुरमुख कार कमाई मारू महला पहला आपे करता पुरख बिधाता जिन आपे आप उपाय पछाता।

पर हर दुख दालद जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल होय रह भगत लिवलाई है। गूजो हर जन सतगुर बाणी एहो जोबन सास है देह पराणी। आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हम मैं दो मार्ग पचह पचाई है। छोड़ो

तात पर आई, पढ़ पढ़ दज्ज है शांत न आई, मिल सत संगत नाम सलाहु, आत्म राम सखाई हे, छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई, हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई, सतगुर सरन पर हो ता उबर हो, यों तरिये पव जल पाई हे, आगे बिमल नदी अगन बिख चेला, तिथे अवर न कोई।

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजे पेंजे रली करीजे, बिन अब भगती बाद मरीजे।

शब्द घर जाने, किसे ही मंदा आख न चले, सच खरा सचियारा ही, साच बिना दर सिजे न कोई, साच शब्द पेंजे पत होई, आपे बख्श लए किस पावे, हउ मैं गर्भ निवारा ही, गुर किरपा ते हुक्म पछाणे।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाई है जैसा की चैत सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

कर लह चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे यों समंदर सी चीनाहि प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन को समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

नाही। एक दर सेव है दर्ज बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हौ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिलहो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हौ मैं मार करहो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुर आ राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर पवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजह पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद दाना नाम जपो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गडई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रले तन सीजै मन मुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह नाम वसार कहां सुख पावह त्रेहो गुण अंत।

राम जपहु अंतरगत ध्यानी, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

मत खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहो हर गुण गावहो तत विचारहो हर लिव लावहो अंत काल जम जोहे ना साकै हर बोलो राम प्यारा ही सतगुर पुरख दाता वड दाना जिस अंतर साच सो शब्द समाना जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पारा ही पंच तत मिलकाया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

अहनस निंदा करह अनेका, बिन सिमरन आवह फुन जावह, गर्भ जोनी नरक मजारा ही, साकत जम की कान ना चूकै, जम का डंड ना कबहू मूकै, बाकी धर्म राय की लीजै, सिर अपरे ओ पार अपारा ही, बिन गुर साकत कहो को तरिया, हम मैं करता पव जल परिया, बिन गुर पार ना पावे कोई, हर जब

नेड न आवे मनसो प्रभ अपरे अपाराही गुरते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकाराही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया कराराही हम मैं ममता करदा आया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकाराही हर की भगत करहो जन पाई अकथ कथो मन मनह समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हाराही हर गुरपूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती नानक राम नाम माते उत्तम।

संतृप्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला। साकत दुर्मत डूबह ताज है, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, दिन मह पांच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हो मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मुह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे सह पछाता ही अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन, अहनस निर्मल ज्योत सुबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाताहि सतगुर सेवह से परधाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाताहि मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन धर चक्कर त

अंत न जानी जा को अलख लखाए आपी अकथ कथा बुद्धता हाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

जिस तन पल्ले शब्द सच्चै ओ माहाही काची सौदी टोटा आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रास सलामत चूका जम का फाही सबको बोले आपन पाणे मनमुख दूजे बोल ना जाने अंदले की मत अंदली बोली आई गया दुख ताही दुख मह जन्मे दुख मह मरना दुख ना मिटे बिन गुर की सरना दुखी उपजे दुखी बिन सै क्या ले आया क्या ले जाही सच्ची करनी गुर की सिरकारा आवन जान नहीं जम तारा दाल छोड़।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सोई।

जाने जो किछ करे सो अपन पाने लख चौरासी जी अपाए पाने सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाए रोवे।

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारे रूप नारे ख्या मित नहीं कीमत शब्द भेद।

कोई, गुर बिन सोजी किना ना होई, साथ मिले सो साथी पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे

तुझ ते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चांद ना सूरज।

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा।

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई। इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे। इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा। सुन्नो चंद सूरज गहनारी, तिसकी ज्योत त्रे पवन सारी। सुन्ने लख पार नरालम, सुन्ने ताड़ी लाएंदा। सुन्नो धरत आकाश पाई, बिन थम्मा राखे सच कल पाई। त्रे पवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा। सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी, सुन्नो उपजी सुन्न समाणी। उत्पुज चलत किया सिर करतै, विस्माद शब्द देखाएंदा। सुन्नो रात दिन सदोह किए, उपत खपत सुखा दुख दिए। सुख दुख ही ते अमर हतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा। शाम वेद रिग जुजर अथर बन, ब्रह्म

सुनो उपजे दास अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजी, सब लिखिया कर्म कमाएंदा, गुरमुख समझै रोग ना होई, ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगा जगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएंदा, पांच तात सुनो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्त कलीखे, पाप पुन भी जाएंदा, उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रत्ते हर रस मत वाले, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरे भाग मलाएंदा, इस मन माया को नेहो कनेरा,

संचो रे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई। कसकर चोर न लागे ताको, धुन उपजै शब्द जगाया। तू एक अंकार नरानम राजा, तू आप सवार है जन के काजा। अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थर तान सुहाया। देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसह परधाना।

कुल निरंजन गाया हो मैं मेत शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हो मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया।

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै। तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया। जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो। कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया। गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा। सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया।

हरे अंतर हर रस पाया, निस दामन ज्यों चमक चंदायन देखे, एहन सजोत निरंतर पेखे, आनंद रूप

नारी देख अदिष्ट रहो निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा भव जाए अनुभव पद पावे आप गवाए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ भंजन पाईऐ बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावै गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपयो सतगुर मतवाके जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरीय अंतर की दुबदा अंतर जरीय पांच बाण ले जम को मारै गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाईऐ शब्द सुरत बिन आईऐ जाईऐ नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरै पहाग मलाया निरपौ सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजै गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जाने सो निरभउ गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपो सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो।

वे अगोचर गुर मिले है परम जाया मन तन तन ते नाम प्यारा अंत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेव हो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर कै हर दरगाह जस गाया सतगुर मिले त महल बुलाई साची दरगाह गत पत पाई साकत ठोर नाही हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेव हो सतगुर समुंद अथाहा पाव हो नाम रतन तन लाहा बिखिया मल जाए अमृत सर नाव हो गुर सर संतोख पाया सतगुर सेव हो संक ना कीजै

राम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साके स्यों बन आई हे। तृष्णा यगन जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर ना पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा निबलागी। अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किनै पछाणी। सच्चै शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हौ मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

किशु ना सूजै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई है।

बार तृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कटांब मोह ना बूझे गुरमुख होवे ता आखी सूझे।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवै पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाई। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख धारी बिन शब्द हो मैं किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मैं सदा उदासी शब्द मुए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावै कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए।

आपे पाणे दे मलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ यों फरमाई है। सतगुर सेवह से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेख, ज्यों पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मलाई है। हम मैं माया मैल कमाया, मर मर जम दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, मन देखो हो लिवलाई है। जोत सुभावे सोई करसी, आप हो आना किस होसी।

सो सब को जासी दूजै भाए बांधा जम फासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साच समाई आपे करता कर कर वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजै।

नह पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनों कहिए जाय आप कराई, जित पावै तित राहि चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावे

बिनसै तहत न लागै बारा, कंचन काया गुरमुख बूजै, जिस अंतर नाम नवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम भोजन सच आधारा। सदा त्रिपत पवित्र है पावन, जित घट हर नाम नवासी है। हौं तिन बलिहारी जो साचै लागे, हर गुण गावह अन दिन जागे। साचा सूख सदा तिन अंतर, रसना

सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी हे, ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया, हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै, चीनै शब्द अबनासी हे, काम क्रोध भरे हमे अपराधी, क्या मुँह लै बोलहै, ना हम गुण ना सेवा सादी।

विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवि जही वेद पढ़ हर नाम ना बूझ माया कारण पढ़ पढ़ लूझ अंतर मैल अज्ञानी अंदा क्यों कर दुत्तर तरी जही वेद बाद सब आख बखान है ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजै ही आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो सच रवि जै ही मारू महला तीजा सच्चा सच्चा तख्त रचाया निज कर वस्या तिथै मोह ना माया सद ही साच वस्या घट

सच्चा तन खटिया कदे टोट न आवे बूझै को विचारी सच्चै लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड भागे।

सच कमावे साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी हे सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी हे बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी हे साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है सेजन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मलाए सतगुर राखे सेजन उबरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी है हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

तन तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन

जीवन जिन अपनाया पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे

लह तोल, ज्यों भावै त्यों राखह रहना, गुरमुख एको जाता ही, जात पाणा ता सच्ची कारै लाई, अवगण छोड़ गुण माहि समाई, गुण मह एको निर्मल साचा, गुर कै शब्द पछाता ही, जह देखा तह एको सोई, दूजे दुर्मत शब्द खोई, एक समय प्रभ एक समाना, अपने रंग सद राता ही, काया कमल है कुमलाना, मनमुख शब्द ना बुझे आना, गुर प्रसादी काया खोजे,

कह तेरी बिन शब्द चूके नहीं फेरी साच सलाहे साच समावे जिन गुरमुख को जाता ही।

पाई रत्न अमोल के अग में अपारा कीमत कमन करे विचारा गुर कै शब्दे तोल तलाई अंतर शब्द पछाताई सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा माया मोह पसरिया पासारा मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे गुरमुख विरले जाताई आपे करता करी कराई सच्ची वाणी सच दिरडाई नानक नाम मिले वड्याई जुग जुग एको जाताई मारू महला तीजा सो सच सेवे हो सिरजनहारा शब्दे दुख निवारण हारा अगमय गोचर कीमत नहीं पाई आपे अगमय अथाहि आपे सच्चा सच वरताई एक जन साचा।

लाए। साचो सेवह साच कमावह, नामे सच समाहाई। तुर भगता मेले आप मलाई, सच्ची भगती आपे लाई। साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म काला हाही। गुरमुख बणज करह पर आप पछाण है, एक सबिन को अवर ना जान है। सच्चा साहु सच्चे बणजारी, पूंजी नाम वसाहाही। आपे साजे सिरते अपाई, बिरले को गुर शब्द बुझाई। सतगुर सेव है से जन साची, काटे जम का पाही। पन्ने घड़े सवारे साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी। मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल पाही। आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

सच्चा सच्ची नाई गुरमुख देव मन वसाई जिन मन वसया से जन सो है तिन सिर चूका काहा ही अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई सदा शब्द सलाही गुणदाता लेखा कोई न मंगे ताहाई ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा अंत न पावह अलाखे अपेवा जिनको नदर करह तू अपनी गुरमुख अलख लखाही।

अपारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाण तावत राखै इकत कर आण नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावे है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई सदा सदा तेरे गुण गावा सच्चे साहिब तेरे मन पावा नानक साच कह बेनंती सच देव हो सच समाहाई मारु महला तीजा सतगुर सेवन से वड भागी अन दिन साच नाम लिव लागी सदा सुखदाता रव्या काट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई

सेवे घोर अंधारा, बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी, सो सच शब्दे लाहाई। दुख सुख करते तुर लिख पाया, दूजा भाव आप वरताया। गुरमुख होवे सो अलिप तो वरते, मनमुख का क्या विसाहाई। से मनमुख जो शब्द ना पछाण है, गुर के पै की सार ना जान है। पै बिन क्यों निर्भो सच पाई है,

कारा गुरमुख पसरिया सब पासारा गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहाई गुरमुख जाता कर्म विधाता जुग चारी गुर शब्द पछाता गुरमुख मरे ना जन्म गुरमुख गुरमुख शब्द समाहाई गुरमुख नाम शब्द सलाही अगम अगोचर वे परवाही एक नाम जुग चार उधारी शब्दे नाम वसाही गुरमुख शांत सदा सुख पाई गुरमुख हृदय नाम वसाई गुरमुख होए सो नाम बूझे काटे दुर्मत फाहाई गुरमुख उपजे सात सुमावे ना मर जम्मे ना जूनी पावे गुरमुख सदा रह रंग राती अन दिन लेंदे लाहाई गुरमुख भगत।

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो निवलाई, हर गुण गावह सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई ना।

पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

काचन काचि अगमे अगोचर वे परवाह भगत वच्छल आथाहाई सतगुर पूरा साच दृढ़ाई सच्चे शब्द सदा गुण गाय गुणदाता वरतै सब अंतर सिर सिर लिखदा सहाई सदा हदूर गुरमुख जापै शब्दे सेवै सो जन त्रापै अन दिन सेवै सच्ची बाणी शब्द सच्चै ओ माहाई अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाई मन हठ कर्म फिर जो नी पाए बिखिया कारण लब लोभ कमावै दुर्मत का दुराही पूरा सतगुर भगत दृढ़ाई गुर कै शब्द हर नाम चित लाई मन तन हर रविया काट अंतर मन पीने भगत सलाहाई मेरा प्रभ साचा असुर संघारण गुर कै शब्द भगत निस्तारण मेरा प्रभ साचा सद ही साचा सिर शाह पातशाही से भगत सच्चे तेरे मन पाई दर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाई।

है संसारा, सब जग बिन सह नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है, नाम सच्चा जग लाहाई, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हर सिउ सद ही रह समाए, गुर कृपा ते मिले वडियाई, होमे रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द न कमाए, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माहे समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, कट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवे सो तत बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़े है बाहर तावे है, मन मुखे अंधे साधना पावे है, अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

दुख पाए, मन ही मन समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चै सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे,

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवै शब्द पछाने नानक दास कह बेनंती सच नाम चित लाएंदा मारू महला तीजा आदि जगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता तुदनो सेव है से तुझ संभाव है तू आपे मेल मलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं।

भौ भागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे भाग गुर शब्द पछाता जात पात सच सच्चा सच सोई हम मैं मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाई मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्त।

अपाई सब खेल तमाशा तेरी वड्याई आपे वेक करे सब साचा आपे पन कढ़ाएंदा बाजी गर एक बाजी पाई पूरे गुर ते नदरी आई सदा अलिपत रह गुर शब्दी साचे सिंह चित लाएंदा बाजे बाजे धुन अकारा आप बजाए बजावन हारा कट कट पौन वह एक रंगी मिल पवन सब बजाएंदा करता करे सो निश्चो होवे गुर कै शब्दे हो मैं खोवे गुर प्रसादी किसे दे वड्याई नामो नाम त्याएंदा।

वह क्यों सुख पाई है, बिन लावै दुख पाईंदा, आप करी न आप कराई, गुर प्रसादी किसे बुझाई, गुरमुख

आई। गुर कै पाणे चलै दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा। आप सिरंदा सच्चा सोई, आप अपाए खपाए सोई। गुरमुख होवै सो सदा सलाही,

हट नाले सतगुरु दिखाए अंतर नाले नावै काबा पारी होवे गुर शब्दी को पाएंदा सतगुर सेवे सहज आनंदा हृदय आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारी है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सचो सच कमावे सद ही सच्चा मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच्चा

बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा। हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मोह ना चूकै माया, अगे जम काल लेखा लेवे, जो तिन कहानी पीड़ा एंदा। पूरा भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चै सुख पाएंदा, तिन सुख पाया जो तुद पाए।

तुद्याई जिस भाणा भावै सो तुझै समाई भाणे विच वड्डी वड्याई भाणा किसै कराईंदा जां तिस भावै तां गुरु मलाई गुरमुख नाम पदार्थ पाई तुदे आपणे भाणै सब सृष्टि अपाई जिसनु भाणा देहि तिस भाईंदा मनमुख अंध करे चतराई भाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई परमे पूला आवे जाए कर महल न कबहू पाईंदा सतगुर मेले दे वड्याई सतगुर की सेवा तुर फरमाई।

सच पाई सच्चे सच मलाईंदा नाम वसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नावे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाईंदा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा सुख पाया निज करवासा पाईंदा सब

अपारा निःचलवा सा पाईला अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरल किने थान पाया इत साथ निभ सलाही सच्ची हर सच्चा।

अनदिन हर सेवियो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग इहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक केत आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ न आवे पग खिसे पछताएंदा गुर कै शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसै सच गुणी गहीरा सचो सच वेखै सब थाई सच सुन मन वसाएंदा हौ मैं गणत गुर शब्द निवारी हर जियो हिरदै रखो उरतारी।

दूजै पाए परम पलाया, हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिनको नदर होवै गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवै वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाए साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार ती कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुर बाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े हन दिन वाद समाले, नाम ना चेतै बद्दा जम काले, दूजै पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पलाएंदा, गुरमुख एकस स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मन

आए हित रंग साचे माहे समाए पूरे भाग को एहो रंग पाए गुरमति रंग चढ़ाईंदा मनमुख बहुत करे अभिमान।

रस लह हर रस पाया, शब्द मरह से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पाया।

पाया, जिसनो बजाए सोई बूझे, हर गुण गावे अंदर सूझे, हम मैं मेरा ठाक रहाए, सहजे ही सच पाया, बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जम्मे चुके ना फेरी, बिख का राता बिख कमावे, सुख ना कबू पाया, बहुते भेख करे भेख तारी, बिन शब्द हम मैं किने ना मारी, जीवत मरे ता मुक्त पाई, सच्चै ना इस माया, अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई, तिस दी बूझै जे गुर शब्द कमाई।

मन पाई, मन तन सच्चे भगती राता, सच्चे सिहो चित लाया। हउ मैं विच सद जलै शरीरा, कर्म होऐ भेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाई, सतगुर ते सुख पाया।

मुख पाया। आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उरतारी। गुर कै शब्द मरे मन मारी हो मैं जाहि समाया। आवन जाने पर जब गोई बिन सतगुर थिर कोई ना होई। अंतर जोत शब्द सुख वसिया ज्योति जोत मलाया। पंच दूत चितवह वेकारा माया मोह काय हो पसारा। सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई सच नाम मन पाया। साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवह शब्द प्यारा।

राम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गत होवे जे

अमृत रस सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया, तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई हे, जिनको करतै तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजै नाही, गुर चरनी चित लाई हे, जिस भावै

मन रतन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुर कहो सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा

सतगुर ते समझ पड़ी मन माही, हो दयाल कृपा करा हर जीव। सतगुर की सेवा लाई है, जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता, सर्वे राव रहया सुख दाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है, जिनको आद मिली वड्याई, सतगुर मन वस्या लिवलाई। आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अबनासी, सर्वे रव रहया कटवासी, तिस बिन अवर न कोई दाता, हर तिस ऐसरे वो प्राणी है। जां को राखे हर राखन हारा, ताको कोई ना साख समारा।

तुझै तै करती हर अनदेन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर दीवान माया का। मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी हे। निमाणे माण करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जावे।

अपनहारा सोई तेरा सहाई है। मात गर्भ में जिन प्रित पालिया सास ग्रास होए संग संभालिया सदा सदा जपिए सो प्रीतम वड्डी जिस वड्याई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे गरीब नवाज करे प्रभ मीरे गर्भ निवारण सर्व सुधारण किस कीमत कही ना जाई है। सो पतवंता सो तनवंता जिस मन वस्या हर भगवंता मात पिता सुत बंधप पाई जिन एह सृष्ट उपाई है। प्रभ आए सरना पहो नहीं करना साध संगत निश्चो है तन्ना मन बच कर्म अरादी करता तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मन तन मह रवया जन्म मरण की जोन ना पवया दुख बनास किया सुख डेरा ज्ञान तृप्त रहे आगाही है।

चिंता गणत मटाई है, हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है, हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वस हो घर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है, खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभे अपनी, सो जन तिसह त्याई है, बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले,

बनी प्रभ तेरी बिनस गई हौ मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग मह सोभ सुहाई है जय जयकार जपहु जगदीसै बल बल जाई प्रभ अपने ईसै तिस बिन दूजा अवर न दिसै एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीवह जन तेरे एक अंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग बलासा है जो पिर करै सो तन तत मानै पिर तन है शिंगार रखै संगानै मिल एकत्र वसह दिन राती प्रियो दे तन है दलासा है धन मांगै प्रियो बहु बिदतावै जो पावै सो आनंद खावै एक वस्त को पहुँच न साकै तन रहती पू

ग्रह पीतर जित उतर भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म युग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई तन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कहया हो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा इचर राख तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देखे बिगसै आपे ही आप पूजा है आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा है साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाहे सच त

दुख सहज कर तेरे, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होए, देह दान सबसे जंत लोए, टूट न आवे पूर पंडारे, तृप्त रहे आगी जाहे, जाके हैं सिद्ध साधक बनवासी, जाके हैं जति सती सुखवासी, एक दातार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहे, करह भगत अर रंग अपारा, खिन मह थापयो थापनहारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्स सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने।

जिस चीते आवह तिस भौ केहा अवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपूरै लै तूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी हम्यो चोल चोल पी जाहे। मरै नाही सद सद ही जीवै अमर भया बनासी थीवै। ना को आवै ना को जावै गुरदूर किया परमी जाहे। पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे माहे समाणी। चढ़ै सवाया नित नित रंगा कटै नाही तोली जाहे। बारहां कंचन शुद्ध कराया नदर सराप बन्नी सचड़ाया। परख खजाना पाया सराफी।

सरद खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फस है। गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगाह देवे मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तै आप बखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन पाणे। साधु तूर जाचह जन तेरे, नानक सद कुरबाना। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृत उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड़ियाई। इस पौड़ी ते

तारथ लहिया जिसे आप पलाए सोई भूले सो बूझे जिसह बुझाएंदा हरख सोग का नगर एहो किया से उभरे जो सतगुर सरनिया त्रिहा गुणा ते रह निरारा सो

नहीं जम्मै सब लाहा मूल गवाएंदा। कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना आप तरह सगले कुल तारी हर दरगाह पत स्यों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोआ सब काले वासे आप प्रभ किया निश्चल एक आप अबनासी सो निश्चल ज्योति सहत्या आएंदा। हर का सेवक सो हर जेहा भेद न जानो मानस देहा ज्यो जल तरंग उठ बहु भांति फिर सलल सलल समाएंदा। एक जाचक मंगे दान द्वारे जा प्रभु पावे ता कृपा तारे देहो दर्स जित मन तृप्तासे हर कीर्तन मन ठहराएंदा। रूड़ो ठाकुर कितै वस न आवे हर सो किश करे जे हर क्या संता पावे कीता लोड़न सोई कराएन दर फेर न कोई पाएंदा। जितै औ कट आए बनत है प्राणी कितै हर त्याई सारिंग पानी जितै पुत्र कलत्र ना बेली कोई तितै हर आप छाएंदा। वड्डा साहिब अगम यथाहा क्यों मिली है प्रभ भी परवाह काट सिलक जिस मार्ग पाई सो विच संगत वासा पाएंदा। हुक्म बूझै सो सेवक कही है बुरा भला दुइ समसर सही है हम मैं जाए ता एको बूझै सो गुरमुख सहज समाएंदा। हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुपाए अतीत उदासी अनक रंग करह बहु भांति ज्यो पिता पूत लडाएंदा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिए जा लय मलाई गुरमुख प्रगट भया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखाएंदा। तू आपे करता कारण करना सृष्ट उपाय धरी सब तरना जन नानक शरण पया हर द्वारे।

श्रवण सुनिए दूजी अवर ना जाप सकाई सगल तुम्हारी तारना आप चितारे अपना किया आपे आप आप प्रवथिया आप उपाय रच्योन पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक घर बारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संग राचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवन हारा।

मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूझ त्रे पवन तावै ता किशु ना बूझे। सतगुर साह भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायना। जाकी धूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावह मीता। सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेटत पार परायना। पार जात लोड़ मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भै पार ब्रह्म होवह निर्मलातु। पारस जब भेटै गुरपूरा तां पारस परस दिखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाई हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने है तो शमात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै। गुरमुखों अलाए ता सोभा पाए तिस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर किरपा मोहे टहले लाए। पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया तुमरी किरपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान दिवायना। भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरह धरती अर आकाशा सिमरह चंद सूरज गुणतासा। पौन पानी बैसंतर सिमरह सिमरह सगले अपार जना। सिमरह खंड दीप सब लोवा सिमरह पाताल पुरिया सच सोवा। सिमरह खाणी सिमरह बाणी सिमरह सगले हर जना। सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा। सिमरह जाक दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना। सिमरह पास पंखी सब भूता सिमरह बन पर्वत अवतूता। लता बली साख सब सिमरह रब रहे आस्वामी सब मना। सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मनता। गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना। सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वरना। सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना। सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा। सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिए एक खिना। कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। कर कृपा जिस भगती लाव हो जन्म पदार्थ सोजिना। जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना। सर्ब निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जो नी भरमुरुना। गुर का शब्द वसै मन जाकै
दुख दर्द प्रमता का भागे, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना, सोतनवंता जिन प्रभ त्याया, सोपतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाके मन बूठा, सोपूर कर्मा नाशिना, जल कल महियल स्वामी सोई, अवर्मा कही है दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काटे ओ ब्रह्म सगला, अवर्णा दिसै एक बिना, ऊचे ते ऊचा दरबारा, कहन न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथाह स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवरना कोई बिया, आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत तिस निकट न आवे, साध संग हर कीर्तन गावे, सगल मनोरथ ताके पूरन, जो सर्वणी प्रभ का जस सुना।

स्वामी तुम मना मारू महला पंजवां प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांचै जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिट है हर औखद हर निर्मल रापै मंगना सरवणी सुनो बिमल जस स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सो कृत नाही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिट है कमाते अव गुण मेरे सिमर सिमर स्वामी मन जीवे पांच दूत तज तंगना चरण कमल जप बोहित चरिये संत संग मिल सागर तरिये अर्चा बंदन हर समत निवासी बहुड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर ले हो गोपाला कृपा निदान दीन दयाला सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर मिल कदे ना होवी पंगना मानता ने अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हाथ त्यागी हौ मैं हंतना जल फल पूर्ण अंतर जामी कट कट रव्या अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर टोट भंडार नाही रतनागर अगह अगाह किस मित नहीं पाईए सो बूझै जिस किरपंगना छाती शीतल मन तन ठंडा जन्म मरण की मिटवी दंजा कर गह काड लिए प्रभ अपने हमें उतार दृश टंगना एको एक रव्या सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाई आद माद अंत प्रभ रव्या त्रिशन बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर करता गुर सद बख्शंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सब किस स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो कीनो सो तुम्हें करायो शरण सहाई संत है तना जाचक जाचै तुम्हें अरादे पतत पावन पूर्ण प्रभ सादे एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन निह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बणी हर बाणी मन नाम मजीठे रंगना सोलह कला संपूर्ण फलिया अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया आनंद बनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू साहिब हो सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करामन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग मह आए जो तुद पाणा से कर्म कमाए तुझ ते बाहर किशु ना हुआ ता भी नाही किस काड़ा ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए ईहा हर जस तेरा भणिए आपे लेख अलेख है आपे तुम सियो नाही किस झाड़ा तू पिता सब बारक थारे ज्यो खिलावे है त्यों खेलन हारे उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना चले नाही कोवे पाड़ा एक बसाए रखे ग्रह अंतर एक पठाए देश दसंतर एक ही को कास एक ही को राजा इन मैं कही है क्या कूड़ा कमन सो मुक्ति कमन सो नरका कमन संसारी कमन सो भगता कमन सो दाना कमन सो होछा कमन सो सुरता कमन जड़ा हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता
हुक्मे हो चा हुक्मे दाना दूजा ना ही अवर तड़ा सागर कीना आत तुम पारा एक खड़ेर सातल कर मनमुख गावारा एक ना पार लंगा वह आपे सतगुर जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुक्म पठाया जी जंत उपाय समाया विखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड्डा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बे अंत अतोला है नाही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे शीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकराई तिसह न आवै जम नेड़ा कीमत कागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसै कह निबेड़ा तिसै शरीक ना ही रे कोई किस ही बुतै जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवां अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मद सूदर दामोदर स्वामी रिखि केस गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया सहस नेतर मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साको गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन अजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी माश काश कूरम आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा निराहारी निरवैर समाया धार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावह देन सुनत सब मोहैगा बनमाला बेभूखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सतसंगा पीत पितंबर त्रिपवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत नाया वै सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भगती तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिसे आप मिलाए आपो हो कोई ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना
आप उपावह आप खपावह तुझ लेप नहीं एक तिलरंगा। एक जी ही गुण कमन बखान सैस फनी सेख अंत न जान। नव तन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जम दूत दुतर है माया। हो कृपाल इच्छा कर रख हो साध संतन कह संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्वला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत धरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले महमौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मुकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामे एह पांज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोर हो खाना गिल करे आओ तो हो मैं लाना पीर पछाण पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यों कुसुम पाट घ्यो पाक हरा जा को मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाय कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे उथापे साजे प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटा का मालका चरण कमल सरण आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारे जप हर हर भौ नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब ता की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु परकारी पालका किसह प्राप्त तो

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, गालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जयाल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खालका। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिन कै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरे नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदय नित तारी, गुर पूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनहु वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग भज चुत स्वामी, दरगाह शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन मह चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत बेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिए, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जूनी पावना, जिसनो बिसर पुरख बधाता, जलता फिर रह नित ताता, किरत कण को रख ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, किस स्यों प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरे ना लावना, तार अनग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कह नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है किसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापे माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवे ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जात कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बध कट है ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मनावना, अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन ना जाई, अचरज रूप बड़ी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जावना।

पहला गिण गाहक गुण वेचिया तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख बकाई, गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहि समाए, मोल अमोल ना पाई है बनजना लीजै हाथ, नानक पूरा तोल है

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत सियो मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डे वडार नानक मिलिया।

गुर तीरख दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निह कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर सिउ बने आई ऐथै सुख दाता मन वसै अंत हुए सखाई हर सिउ प्रीति उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटै मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन त्रिपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आप आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मनमुख मूरखा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादे उबरे जिन हर रस चखा आप कराए करे आप आपे हर रखा।

आवण जावण दुख घना कदे ना चूकै चिंदा कापड़ जिवें पछोड़ी है कड़ी मोहत कड़ियाल नानक सच्चे नाम बिन सिरों ना चुकै जंजाल महला तीजा त्रे पवन ढूंढी सजना हम मैं बुरी जगत ना चुर ही अड़े सच चो नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियोन हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोहने सच्चे दर जाने ऐथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणी तन तन से जन जिन हर सेविया तिन हौ कुरबाणी सलोक महला पहला महल कुचजी मड़बड़ी काली मनहु कसुध जे गुण होवन ता पिर रवै नानक अवगुण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी सा पूरी परवार नानक अहनस सदा भली फिर कै हेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया किरपा करके अपनी गुर शब्द मलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया हन रस ठाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भूख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन उर नाम शिंगार नानक तन आगे खड़ी सोभा बंती लार महला पहला ससुरह पई है कंत की कंत अगम अथाह नानक तन सुहागणी जो पावे है वे परवाह पौड़ी तख्त राजा सो बह जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से एह भूपत राजे ना आखी है दूजे पाए दुख होई कीता क्या सलाही है जिस जांदे बिलम ना होई निश्चल सच्चा एक है गुरमुख बूझै सो निःचल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाही नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे महला तीजा मन के अधिक तरंग त्यों दर साहिब छुटिया जे राचै सच रंग गूढ़ै रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगे सच पौड़ी।

नानक तरवर एक है, एको फूल पे रंग पौड़ी, जो जन लूजह मने सिंह से सूरे परदाना, हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना। ज्ञानियां का एहो महत है, मन माहे समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना। जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत न जिताना। सलोक महला तीजा, जोगी होवा जग भवा, कर कर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है, किस किस उत्तर देओ। भिख्या नाम संतोख मड़ी, सदा सच है नाल, भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल। नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल। महला तीजा, जित दर लेखा मंगिया सो दर सेवे हो ना कोय, ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोय। किस सरनाई छूती है लेखा मंगे ना कोय, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे। हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड्याई दे। सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है। अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जाव है, हत क्रोध स्यों लूज दे अगे पिछे दुख पाव है। हर जियो अहंकार ना पावई वेद कूक सड़ाव है, अहंकार मोए सेव गति गए मर जन्म है फिर आव है। सलोक महला तीजा, कागो होए न उजला लोहे नाव ना पार, पिरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार, तृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा, मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार, नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोई, नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेटै सोई। पौड़ी, दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा, शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवे शांत पाई है जप सास ग्रासा, सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हरदासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं, नामे बल जासा। सलोक महला तीजा, होआ पंडित जोत की वेद पढ़ा मुख चार, नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए

आप आपे नदर करे आपे देवड़े आईया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै अफरयो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल। दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास इश्क महबत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस जुग में नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चे ओ पल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर अन पल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिख विहाज है बिख संग्रह बिख स्यों तर है प्यार बाहर हो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाइनी वादी तरन प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल कर है आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजै परम पलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभयाई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय। इत धन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आय जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदा रह भूख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधार है सहसा कदे ना जाय। नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो किस बिन अवर ना कोय खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हौ मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना व्या जै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे नियाउ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाउ सब सचो सच वर्तदा सदा सच नियाउ अमृत का रस आया
मन वसिया नाहूं सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत् न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन बिरले जानिए है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजन बिकम संसार पौड़ी मन मुख अंदर ना भालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मन मुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अग्गे नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई किसनो कहिए नानका जा घर वरतै सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुकै जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांझ धार सलोक महला पंजवां माया मनो ना विसरै मांगे दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम महला पंजवां माया साथ ना चलई क्या लपटावह अंध गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायुन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियुन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया इन सच कमाया नानक तिस शरणागती जिन जगते उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा जित पावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा ज्यो नानक आप नचाएंदा तिवही को नचा शुद्ध मारू वार महला पंजवां दखणे महला पंजवां इक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार महला पंजवां
नीहो मिहिंजा तौ नाल ब्या नेह कुड़ावे देख कप्पड़ भोग डरावणे जिचर प्री ना देख महला पंजवा उठी चालू कंतड़े हो पसी तौ दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हव रस चार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या हुए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नावखंड पृथ्वी साज हर रंग सुवारिया वेकी जंत उपाय अंतर कल तारिया हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया तू जाने सब बेदयाप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तौ मोहया कद पसी जानी तो हे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा भाओ है विछोड़ा हूं मैं रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू ना एक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपड़ कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवह आप दयाल तिस लावह सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृत करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई महला पंजवा हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल महला पंजवा सेज वछाई कंतकु किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरतह आप कुदरत देखावही तेरी भगत भरे भंडार तोट ना आवही एहे रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवह आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे ना आवै तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मैं पिरी महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ई साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूश पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता
ज्यो आप चलावे है त्यो चल दे, किस वस ना जनता दखणे महला पंजवां, कुरिए कुरिए वैद्या तल गाला महरीर, वेखे छिकड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर, महला पंजवां सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आत सड़ी मांझ नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यों।

उत्तर पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जाने है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख अनंदी अनंत सब जोत समाहरा तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया गाफल जले ओह पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरियाण मौजूद बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवा नानक पुसरिया पकाइया पाइया थाले माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हो मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साद लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अग्गै सकती हारिया केवै हर पाइया एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवा अगाहा कूतरांग पिछा फेरना मुहडड़ा नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवा सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित हबे जानने अपना कहीं ना खाहे चित महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगै मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारे है जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवा देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवा दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीव सा महला पंजवा कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुर भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चहो कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै ऐसी शोभा जने की जे वडहर परतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पी रवियास जिन्ना की मैं आसड़ी

मार निवाड़ा, गुर पौजले पार लंघाया, जिता पावाड़ा, गुरमति सब रस भोगदा, वड्डा आखाड़ा, सब इंद्रिया वस कर दित्तियो, सतवंता साड़ा, जित लायन पितै लग दिया, नह खिंचो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाएंदा, गुर अंदर वाड़ा, गुर नानक तुठा पाई रहो, हर वसदा नेड़ा, दखने महला पंजवां, जा मूह आवह चित तू, ता हब्बे सुख लहाओ, नानक मन ही मंज रंगावला, प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवां, कप्पड़ भोग वकार, ए हब्बे ही शार, खाक लड़ेंदा तन के, जो रत्ते दीदार महला पंजवां, क्या तक है व्यापास, कर ही अड़े एक आधार, थियो संतन की रेण, जित लब्बी सुख दातार पौड़ी, बिन कर्मा हर जियो ना पाईए, बिन सतगुर मनुआ ना लगे, धर्म तीरा कल अंदरे, एहो पापी मूल ना तगे, एह कर करे सो एह कर पाए, एक कड़ी मोहत ना लगे, चारे युग मैं सोदिया, विन संगत अहंकार ना पगे, हौ मैं मूल ना छुटई, विन साधु सत संगे, तिचर था ना पावई, जिचर साहिब स्यो मन पंगे, जिन जन गुरमुख सेविया, तिस कर दीवान अपगे, हर कृपा ते सुख पाया, गुर सतगुर चरणी लगे, दखणे महला पंजवा, लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माओ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाए महला पंजवा।

पौड़ी मन लोचै हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्पयो हौं मैं तजो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहिब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथिया तख प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई इक बे पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी सुख कटाऊ डूए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिए भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं इन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थी कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब सियो नित गर्भ फिरामी फिरह गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचरदे फिरह संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी दखणे महला पंजवा मुखों अलाए हब मरण पछाण दो कोई नानक किन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो तैं तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया महला पंजवा मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा मूह तन प्रेम अथा पसन कु सच्चा धनी पौड़ी निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा आवै जाए पवाईऐ बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चै पातशाह देख तुर कर मचा जम दूती है हेरिया दुख ही मह पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मले उतरै सच्चे के गुण गाए महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जनम जय कट बुठा सच तनी महला पंजवा लोयन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो माफिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया
तिन सब सुख पाई ओह आप तरिया कटंब सियो सब जगत तराई ओ न हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर सिउं बन आई दखणे महला पंजवां सच सुहावा कांडी है कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्ले होए महला पंजवां सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां सुतड़ी सो सहो डिठ तैं सुपने हौ खन्नीए महला पंजवां सज्जन सच परख मुख अलावण थोथरा मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पावड़ी तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी काजी सेक मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी निश्चल सच खुदाई एक खुदाई बंदा अवनासी दखणे महला पंजवां डिठी हब टंडोल इक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवां आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस आस निराशा इक तू हौ बल बल बल गई आस महला पंजवां विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरे ओद बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोध पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल है वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी थिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी सलोक दखणे महला पंजवां सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवां सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवां हिक सकून तू आहे पाशाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगादा निश्चल नाम नान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुरसादा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखणे महला पंजवां जोड़ बंदे आप सो तराए किनखे तारेंदड़ो पी तार नानक पिर स्यों रत्या महला पंजवां जिथै कोई कथन नाउ सुनंदो मां पिरी मूं जलाऊ तत नानक प्री पसंदो।

निमण आंदी देह पौड़ी नैनी देखो गुर दर्शनो गुर चरणी मत्था पैरी मार्ग गुर चलदा पखा फेरी हत्था अकाल मूर्त हृदय त्याएंदा दिन रहन जपंथा मैं छड़िया सगल अपायणु प्रवासै गुर समरथा गुर बख्शिया नाम निधान सबो दुख लथा भुग हो पुंच हो भाई हो पल्लै नाम अगथा नाम दान इशनान दिड़ सदा करहु गुर कथा सहज भया प्रभु पाया जम का पहो लथा सलोक डखने महला पंजवा लगड़िया पिरियन पेखंदिया ना तिपिया हब मजाहू सो तनी ब्याह ना डिठो कोई महला पंजवा कथनिया संतहा ते सुखाऊ पंदिया नानक लदनिया तिन्हा जिन्ना भाग मथाड़े महला पंजवा डूंगर जला थला भूम बना फल कंदरा पाताला आकाश पूर्ण हब घटा नानक पेख जियो इकत सूत परोतियां पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खलाएंदा नहीं कर दयालक औगण को ना चितारदा गल सीती लायक मुह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौंपे उन इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालों कदे ना विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक सलोक डखने महला पंजवा नानक कच्चड़िया स्यो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओए जीवंदे विछड़े ओए मुया ना जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलिया चमकन कुरन घटा अतकालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम पिरी सुहंदिया महला पंजवा जल फल नीर भरे शीतल पवन चलार दे सेजनिया सोएन हीरे लाल जड़ंदिया सुपार कपड़ भोग नानक पिरे विहूणी तत्तियां पौड़ी कारण करता जो किया सोई है करना जे सौ तावह प्राणिया पावह तुर लहना बिन कर्मा किशु ना लबई जे फिर है सब धरना गुरमिल पौ गोविंद का भय डर दूर करना भय ते बैराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म ना मरना हे आए कमाए ते आया पाया साध सरना बोहित नानक देव गुर जिस हर चढ़ाए तिस भौजल तरना सलोक महला पंजवा पहला मरण कबूल जीव

किया तुर मौले तुदहों बार किस नहीं नानक गुण बोले राग मारू बाणी कबीर जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडिया कवन कमत तुम लागे बूढ़ो हो गे परवार सकल सिंह राम न जपो अपागे रहाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा जी बदहो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत पाई आपस को मुनवर कर थापो का को कहो कसाई मन के अंधे आप न बूझो काहे बुझावो पाई माया कारण विद्या बेचो जन्म अभिथा जाई नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई कह कबीर राम राम छूटो नाहे ता बूढ़े पहाई बनह बसे क्यों पाई है जौलो मनो ना तजह बेकार जेहे घर बन समसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाई है रामा रंग रवो आत्मै राम रहाओ जटा पसम लेपन किया कहां गुफा महबास मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते हुए उदास अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माए बिडान ज्ञान अंजन जेह पाया ते लोयन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए रिद सिद जा को खुरी

रहाओ। धर्मराय जब लेखा मांगै बाकी निकसी पहारी, पांच किरसानवा भाग गए लह बांधियो जीओ दरबारी। कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो निबेरा, अब की बार बख्श बंदे को।

प्रसाद अनभव किनै ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनभव होए बणा हंबै सहो हदूर देखै ता भव पवै बैरागी अड़े हुक्मै बूझै ता निरपो होए बणा हंबै हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब लोक बणा हंबै तृष्णा पास ना छोड़ी बैरागी अड़े ममता जालिया पिन बणा हंबै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए बणा हंबै सतगुर बिन बैराग।

कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार मुक्त चारै सिद्ध मिलकै दूल्हा प्रभु की शरण परेउ। मुक्त भयो चौहू जुग जान्यो जस कीरत माथै छतर धरेउ। राजा राम जपत को ना करेउ गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम परेउ। रहाउ शंख चक्र माला तिलक विराजित देख प्रताप जम डरेउ। निरपौ भये राम बल गर्जित जन्म मरण संताप हिरेउ। अमरीक को दियो अपै पद राज पपीखन अधिक करेउ। नौनिध ठाकुर दई सुदामै त्रू अटल अजहू ना टरेउ। भगत हेत मारेउ हरनाखश नरसिंह रूप होए दे धरेउ। नामा कह भगत बस केसव अजहू बल के द्वार खरो मारू कबीर जियो। दीन बसारे उरे दीवाने दीन बसारे उरे पेट भरेओ पशुआ ज्यो सोयो मनुख जन्म है हारेओ। रहाओ साध संगत कबहू नहीं कीनी रचेओ तंदे झूठ सवान सूकर बायस जिवै भटकत चालेओ ऊठ। आपस को दीर्घ कर जान औरन को लग मात मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे दोजक जात। कामी क्रोधी चातुरी बाजी गर्बे काम निंदा करते जन्म सरानो कबहू ना सिमर्यो राम। कह कबीर चेतै नहीं मूर्ख मुग्ध गवार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़ सा दत किया। अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया अघड़ घड़िया तह अपियो पिया। मन आदि गुण आदि विखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम से

तन जोगन का गर्भ ना कीजै, कागद ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किस ना बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगै,

राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माते शतर तरै रहाओ। जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तू ही तरै, नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सैन तरै, कह रविदास सुनो रे संत हो, हर जियो ते सबै सरै मारू।

पावे पादो परम पुल्ली पर योबन पछताणी जल थल नीर भरे बरस रुते रंग माणी बरसै निसकाली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रियो प्रियो चवै बबीहा बोले पोयंगम फिरहंड संते मच्छर डंग शायर भर सपर बिनहर क्यों सुख पाई नानक पूछ चलो गुरे अपनी जह प्रभ तह ही जाइए असन आओ पिरा सा तन झूर मुई ता मिलिए प्रभ मेले दूजे पाए खुई झूठ विगुती ता फिर मुती कुकाहा कहा से फुले अगे काम पिछे रुत जाडा देख चलत मन डोले दह दिस साख हरी हरियावल सहज पक्कै सो मीठा नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया दीपक सहज बलै तत जलाया दीपक रस तेलो धन पिर मेलो तन अमा है सरसी अवगुण मारी मरै ना सीजै गुण मारी ता मरसी नाम भगत दे निज कर बैठे अजहो तनाड़ी आसा नानक मिलहो कपट दर खोलहो एक घड़ी खट मासा मगर माहो भला हर गुण अंक समावे गुणवंती गुण रवे मैं फिर निश्चल भावे निश्चल चतुर सुजान बधाता चंचल जगत सवाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे प्रभ पाणे ता पाया गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागै नानक सा तन नाह प्यारी अब भगती पिर आगै पोखत खार पड़ै वन त्रिण रस सुखै आवत की नाही मन तन वसह मुखे मन तन रव रहे जग जीवन गुर शब्दी रंग माणी अंडज जेरज सेतज उत पुज कट कट जोत समाणी दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो नानक रंग रवै रस रसिया हर सिओ प्रीत स्नेहो माघ पनीत पई तीरथ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद पावा सर नावा गंग जमन तह बेणी संगम सात समुंद समावा पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारास हर जप अठ सठ तीरथ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अन दिन रहस पया आप गुआया मन मोह चुकाया जा किस फाया कर कृपा कर आऊ बहुते वेस करी पिर बाजू महली लहा ना थाऊ हार डोर रस पाट पटंबर पिर लोड़ी सिंगारी नानक मेल लई गुर अपने घर वर पाया नारी बेदस महारुती थिती वार भले घड़ी मूर्त पल साचे आए सहज मिले प्रभ मिले प्यारे कारज सारे करता सब बिद जाने जिन शिंगारी तिसह प्यारी मेल भया रंग माने कर सेज सुहावी जा फिर रावी गुरमुख मस्तक भागो नानक ऐन सरावै प्रीतम हर वार फिर सुहागो तुखारी महला पहला पहले पहरै नैन सलोनड़िए रैन अंधियारी राम।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूजै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया, जाग अचेती राम, वखर राख मुइये, खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुरहेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावै, नानक मूर्ख

नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया तावत पंच रही।

चूकी अभमानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन भानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगति जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

ते मन मानिया जिन जल थल त्रे भवन घट घट थापिया सो प्रभ गुरमुख जानिया करन कारण समरथ अपारा त्रे विद मेट समाई नानक अवगुण गुण।

खोई प्रगट हुई चूके सोग संताप ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप पछाता आपै पेयड़ घर शब्द पतीनी सहुरड़ पिर पानी नानक सतगुर मेल मलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला पुलावड़ भुली पुल पुल पछो ताणी फिर छोडियाड़ी सुती फिर की सार ना जानी फिर छोडी सुती अवगुण मुत्ती तिस तन विदण राती काम क्रोध अहंकार विगुती हों मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया पसम पसम समाणी नानक सच्चे नाम विहूनी भुल भुल पछो ताणी सुन नाह प्यारी एक बेनंती मेरी तू निज कर वस्याड़ा हौ रुल भसम ढेरी बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कही है क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना।

साची सच मत तेरी साजन देस वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिले विछुनी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रोस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी।

लाल रंगी ले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया हवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिये सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्ब जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे आ गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंते पाए नित देव चढ़ सवाया अपरंपर आपे थाप उथापे जिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पा

राम गुण गाए राम रसाए रसियह गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारहे भय काट निरपहो तरह दुत्तर

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिन जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारे आ गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विकट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुरु बिटहु कुमाय, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड निस्तारिय राम, हम मूड मुगद किस्मित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर भरमे, हुण तौ शरणागत आई, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लाग हैं सतगुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाई, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास बसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हौ सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देउ, जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, जो तुम प्यावे जगदीश ते जान पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम त्याया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरनी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेओ अगम, गुर सतगुर बचन लहया, तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जां बह गुरमुख हर नाम बोल है, जां खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अराध्या, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच पाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते परवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरियात, ज्यों तू चलावह प्यारे हो तिवें चला, हमरे हाथ किश नाही, जां तू मेलह ता हो आए मिला, जिनको तू हर मेलह स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तनी ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या भला, तू अंतर जामी हर आप, ज्यों तू चला वह प्यारे हो तिवें चलना, तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रेष्ठ नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम, जिन कै तुर लेख मात, जिनको तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम अराध्या, तिनके पाप एक निमख सब लाथे, जिन गुरबचनी हर जापया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपया, तिन देखे हो भया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रेष्ठ नाथ, तू जल थल महियल भरपूर सब ऊपर साच धनी, जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त घणी, जिन जपया हर ते मुक्त पराणी, तिनके उजल मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन भये सोहेले, हर राख लिये रखण हार, हर संत संगत जन सुनो पाई, गुरमुख हर सेवा सफल बणी, तू जल तल महियल भरपूर सब ऊपर साच तणी, तू थान थरंतर हर एक, हर एको एक रविया,
वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवह हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो धन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चवया तू थान तनंतर हर एको एक रवया तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है जिसकै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिक है हर गुण हृदय टिक है तिसकै जिस अंतर भौ भावनी होई बिन भय किने ना प्रेम पाया बिन भय पार न उतरिया कोई भौ भावो प्रीत नानक किसह लागै जिस तू अपनी कृपा करह तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है तुखारी महला चौथा नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन मह बिनसे हर पाया प्रभ अविनासी हर आप करतै पुरब किया सतगुरु कुल खेत नावण गया नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बणी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बणी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया जिन दर्श सतगुर गुरु किया तिन आप हर मेलाया तीर्थ उदम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ खबर भई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गुआया जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया जगाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम त्याया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जगाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर कै नाए लय सब छुटक गया दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया आड़ दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई भाई हम करह क्या किस पास मांग है सब भाग सतगुर पिछे पई जगातिया अपाव सियाणप कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिले आए नगर महाजना गुर सतगुरी उठ गई गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाऊ थे हो गुआया कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुरबचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओठ गही तुखारी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जल मीना
लागा रंग मरारा कीमत कही न जाई ठाकुर।

प्रभु मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनिजै तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई

प्राण हित चिता प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जां को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा ढाक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बिधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद का नानक दास तां कह बलिहारी मिले नाम हर निमका केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गावी अगम अगोचर ना जाई हर लखिया गुरपुरा मिले लखावी रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लावी रे सब को भगत करे हर केरी हर पावे सो थाए पावी रे हर हर नाम अम

गऊ सुख माने त्यों नानक हर गल लावी रे। केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो हो इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय हर गुण।

आई संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अम

तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गमन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हरे।

नाम प्रीत लागी मन पीतर मांगन को हरदान रहाउ सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखु मान देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दामोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक को हर कै रंग रंग हो चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाहो कर कृपा सतसंग मलाव हो तुम देव हो अपनो नाउ रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाऊ वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तेरो ठाओ सर्व प्रित पाल है सगल समाल है सगलिया तेरी शाओ नानक के प्रभ पुरख बधाती कट कट तुझह दिखाओ केदारा महला पंजवा प्रिया की प्रीत प्यारी मगन मने मह चितवों आसा नैनो तार तुहारी रहाओ ओए दिन पहर मूर्त पल कैसी ओए पल करी के हारी खुले कपट तपत भुज तृष्णा।

कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चाल साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी अनाथा के नाथ रहाव सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिब

ते हरी अब ए प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चात्रक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना तेव एहे परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी केदारा मोहल्ला पंजवा प्रीतम बसत रिद मह खोर परम पीत नवार ठाकुर गह लिहो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर ते लै मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक

रहाउ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर पर मान। सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार। रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपज तो बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद।

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाउ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे, सेव

आऊ पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने ढालिया हर गुण निद गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत शोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने राम नाम उरहारे राग केदारा बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद उस्तत निंदा धूप बरजत तजोह मान अभमाना लोहा कंचन सम कर जान है ते मूर्त भगवाना तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह बिबरजत हर पद चीनै सोई रहा राजगुण तम गुण सत गुण कही है एह तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चीनै तिन ही परम पद पाया तीर्थ बरत नेम सुच संयम सदा रह निहकामा तृष्णा यर माया भ्रम चूका चितवत आत्म रामा जेह मंदर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा निरपो पूर रहे भ्रम भागा कह कबीर जन दासा किन्ही बन जिया कांसी तांबा

माया निर्मूलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दिस आप चलावे निश्चल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संत हो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एकै नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै ता मन खीवा पाई

खान भाउ भगत स्यों काज न कछु है मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभमान कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान रहाओ लालच झूठ बिकार महामद एहे बिद औद बिहान कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मतिया संग ना कछ लै जाए रहाओ गहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कटंब मिल हंस अकेला जाए वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुर न देखे आए कहत कबीर राम की ना सिमर हो जन्म अकारथ जाए राग के दारा बाणी रविदास जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद खट कर्म कुल संयुगत है हर भगत हृदय नाही चरनार बिंद ना कथा भावे सुपच तुल

पद है अमरेऊ राम भगत बसेख रहाउ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हित लोग बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरी तू क्यों ना तरह रविदास राग भैरू महला पहला घर पहला चौपदी।

होए। क्या कहिए किस कही ना जाए, जो किस अहै सब तेरी रजाए रहाओ, जो किस करना सो तेरे पास,

राग भैरों महला पहला कर दूजा गुर कै शब्द तरे मुन केते इंद्रादिक ब्रह्माद तरे सनक सनंदन तपसी जन केते गुर प्रसादी पार परे भवजन बिन शब्द क्यों तरियै नाम बिना जग रोग व्यापिया दुबदा डुब डुब मरियै रहाउ गुरदेवा गुर अलाखे अपेवा त्रिपं

मन जोगी मन बिनस बेयोगी मन समझै गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब भरपुर लीना सात शब्द निसता।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालू प्राणी, हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरो महला पहला, पूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पये बहरे, मनमुख नाम ना जानी, अंधले क्या पाया जग आई, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहाओ, जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु पये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा, भैरो महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही, दिन सजन जाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी रहाओ, ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधे सिर तंदा, काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया,

ए जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाउ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत न आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया। राग भैरो महला तीजा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाउ। चारे वर्ण आख सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा। पंच तत् मिन देही का अकारा घट वध को करे बीचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा जोगी गिरही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोए जागत रह ना मूसे कोई रहाउ। सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे। सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे। सो जागे जो एको जाने पर किरत छोड़े।

करे सब कुल उधारन हार, बिन नावै मन मुख जम पुर जाहे, औखे होवै चोटा खाहे, आपे करता देवै सोए, नानक नाम प्राप्त होए। भैरों महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द बीचारे, हर जियो अपनी कृपा तार, गुरमुख नामे लगै प्यार, रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए, पूरै गुर मेलावा होए, निज कर वसै सहज सुभाए, गुरमुख नाम वसै मन आए, आपे वेखै वेखण हार, नानक नाम रखो उर धार। भैरो महला तीजा, कल युग मह राम नाम उर धार, बिन नावै माथै पावै शार, राम नाम दुलब है भाई, गुर प्रसाद वसै मन आई, रहाउ राम नाम जन पालह सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए, हर का पाणा मन्नह से जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान, सो सेव हो जो कल रहया तार, नानक गुरमुख नाम प्यार। भैरो महला तीजा, कल युग मह बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे, कल युग मह राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार, रहाउ तन मन खोज करै मह पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया, ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया तेहो लोए, कल युग मह हर जियो एक, होर रुत ना काई, नानक गुरमुख हिरदै राम नाम लेहो जमाई। भैरों महला तीजा, कर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, दुबदा मन रोग व्यापे, तृष्णा जलह अधकाई, मर मर जमह ठौर ना पावह, बिरथा जन्म गवाई, मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई, हौ मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाई रहा, सिमरत शास्त्र पढ़ह मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई,

हर का नाम निधानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरतै है तिन निज कर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छे है सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवाव है लाभ मांग है लाहा लाभ किडू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवह दिन राती हमे रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूज है बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरों महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाए खुआई। उदर नै सान ना परियै कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाई।

मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सो रलिया मान जो किस कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए लै गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सो जी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाउ सब मह इको रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेविया दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताई नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जम्मे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहा पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौंकत फिरे दरबार गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया पुरतार ज्यों तिस पावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई भैरों महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय मनमुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर सिउ कदे न लागे प्यार रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै

अनुजात हौ तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाउ जह जह देखा तह हर प्रभ सोई सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई जिस कौ तुम हर राखिया पावे तिसकै नेड़ै कोई ना जावे तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर भैरों महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूरत जिस हिरदय हर नाम मरार मस्तक भाग होवै जिस लिखिया सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार मधसूदन जपिया उरतार देही नगर तस्कर पंच धातु गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ जिनका हर सेती मन मानिया तिन कारज हर आप सवार तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर अंगीकार किया करतार मता मसूरत ता किश कीजै जे किश होवै हर बाहर जो किश करे सोई भल होसी हर त्याव हो अन दिन नाम मरार हर जो किश करे सो आपे आपे ओह पूछ ना किसै करे बीचार नानक सो प्रभ सदा त्याई जिन मेलिया सतगुर कृपा धार भैरों महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी जिन जपया गत होए हमारी तिनका दर्श देख मन बिगसै खिन खिन तिनको हौ बलिहारी हर हिरदय जप नाम मरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दासन दास की जय पनेहारी रहाउ तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम जिन हिरदय वसिया बनवारी तिनकी सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते हर दरगाह काढे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावह तिन नक काटे सिरजनहारी हर आप बुलावै आपे बोलै हर आप निरंजन निरंकार निराहारी हर जिस तू मिल है सो तुद मिलसी जन नानक क्या एह जंत विचारी भैरों महला चौथा सत संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्री मह नित चरनी जग जीवन हर त्याए तरनी अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाई जेवायत गणने रहाउ गुरसिक हर बोलो हर गावहु ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख कने धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दरगाह हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच भगता हर धरनी नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवनी।

पंजवा उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहा सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता कर सुख वस्या बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया भैरू महला पंजवा वर्त ना रहो ना महर मदाना तिस सेवी जो रखे निधाना एक गुसाई अलो मेरा हिंदू तुर्क दुहान बेरा रहाओ हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा पूजा करो ना निवाज गुजारो एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण कहो कबीर एहो किया वखाना गुर पीर मिल खुद खसम पछाना भैरू महला पंजवा दस मिर्गी सहजे बंद आनी पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी संत संग ले चढ़ियो शिकार मृग पकरे बिन घोर हथियार रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए अहेरा पायो कर कह गाए मृग पकरे कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट एहो अहेरा कीनो दान नानक कह कर केवल नाम भैरू महला पंजवा जे सौ लोच लोच खावाया साकत हर हर चीत न आया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया नह पीजे अधिक सुकाया खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया त्यों साकत ते को ना ब्रासाया कित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रभ बणत बढ़ाया भैरू महला पंजवा जियो प्राण जिन रतियो शरीर जिन्ह अपाए तिस को पीर गुर गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी सद शाम रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत मीत हीत धन नह पारना तन

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए भैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै पीव

नानक दास एहो किया बीचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार। भैरो महला पंजवां, लेप न लागो तिनका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ।

शोभा पावे प्रभु के द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पैरों महला पंजवा, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी तेरा के नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाऊ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो महला पंजवा, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है चित बिगरस काज रहाऊ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञान, हर की भगत करह।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीरथ नहीं पाया, मिटिया आप पए सरनाई, गुरमुख नानक जगत तराया, पहरो महला पंजवा, बन मह पेखियो तृण मह पेखियो, ग्रह पेखियो उदासाई, दंड धार जट धारै पेखियो।

तपी तपी सर मुन मह पेखियो नत नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अस्ति सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तो किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरू महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करे बिक संचै नित डरता फिरे है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

परग्रह जाय दरबिर मिथ्या कर खाय पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड़ अंतर वस्तु संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाय जिस मस्तक कर्म लिखिया लीला।

अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जाने सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुए बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाई, क्या कड़िया जा रहया समाई, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नाम प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तव कड़िया जे किस हुए तिंगाने, तव कड़िया जे कूल रिजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यों पावे त्यों करह निबेरा, दुतिया नास्त एक रहे आसमाए, राखो पैज नानक सरनाई, पहरू महला पंजवा, बिन बाजे कै

बिरथी सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जिहवा कहां को बकता।

कहां कोई पंडित बिन अमरै कैसे राज मंडत बिन बूझे कहां मन ठहराना नाम बिना सब जग बोराना बिन बैराग कहां बैरागी बिन हौ त्याग कहां को त्यागी बिन बस पंच कहां मन चूरे नाम बिना सद सद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

फिर जोनी परमै रोग बंद रहन रती ना पावै बिन सतगुर रोग कतह ना जावै पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहा पकड़ रोगों काढ लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया भैरों महला पंजवां चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना झूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपूरै दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा चीत आवे ता पूरे काजा चीत आवे ता रंग गुलाल चीत आवे ता सदा निहाल चीत आवे ता सद तनवंता चीत आवे ता सद निपरंता चीत आवे ता सब रंग माणे चीत आवे ता चूकी काणे चीत आवे ता सहज घर पाया चीत आवे ता सुन समाया चीत आवे सद कीर्तन करता मन मानिया नानक भगवंता पैरों महला पंजवां बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी नीत हमारे सदा अविनाशी कुटुंब हमारा निज घरवासी हम सुख पाया।

अन्ते अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भय दयाला। नानक दास देख भय निहाला, भैरो महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ। सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत् ज्ञान रहाव। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

रहत दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कह साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरू महला पंजवां, नमस्कार ता को लख बार। इहो मन दीजै ता को वार, सिमरन ता कै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिनमै ऊणे सुपर भरिया। खिनमै सूके कीने हरिया, खिनमै न थावे को दीनो थान। खिनमै न माणे को दीनो मान, सब मह एक रहिया परपूरा। सो जापै जिस सतगुर पूरा।

मोहे दुहागने आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिटयो दुख अर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाउ, तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्मार।

बहुत निदान जा को सतगुर दियो नाम जा को भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो

की आवे, बेसवा भजत किस नह शर्मावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हार, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाई, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार ना जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ नुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार रहाउ, जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगा जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया।

आस्था, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होई, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाऊ, त्रेविद माया रही ब्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ पागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

का मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना सगल मनोरथ पूर्ण काम भगत अपने को देव हो नाम सफल सेवा गोपाल राय करन करावन हार स्वामी।

थान बैठावो दास अपने को भगती लावो नमाने को प्रभ दे तो मान मूड मुग्ध होए चतर सुगयान सगल पयान का पौ नसै जाने अपने कह हर मन।

संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल मह नाम वखाणी संत मंडल का नेह चले आसन संत मंडल मह पाप बनासन संत मंडल मह निर्मल कथा संत संग हौं मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं बनास संत मंडल मह हर गुण तास संत मंडल ठाकुर बिसराम नानक ओत पोत भगवान भैरु महला पंजवा रोग कवन जा राखै आप तिस जन होए ना दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करै तिस ऊपर ते काल पर हरै सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै निकट न आवै ता कै जाम रहाव जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया कवन मूल ते क्या प्रगटाया आपह मार आप जिवालै अपने भगत को सदा प्रतपालै सब किछ जान हो तिस कै हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ दुख भंजन ताका है नाउ सुख पावे है तिसके गुण गाओ सुन स्वामी संतन अरदास जियो प्राण धन तुमरे पास एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ तेख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ, अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

नाम जाप मन परगास गुर के मत लई कहो नानक ताकी पूरी पई भैरू महला पंजवां सुख नाही बहुतै धन खाटे सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइय वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हों करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावै निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिनै जन जपना।

अपाउ गुरमुख जपियो हर का नाउ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाउ रोग दुख गुर शब्द निवारी नाम औखद मन पीतर सारी गुर पेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जम त्रास साध संगत ऊंद कमल विगास गुण गावत निश्चल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दलाभ दे आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी पैरों।

सोवै हर सिमरन छाड परम गत चाहै मूल बिना साखा कत्या है गुरु गोविंद मेरे मन त्याई

का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल बिन खाए दूजे नहीं भूख रोग जाए ता उतर है दुख काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया तन तन साध तन हर नाओ आठ पहर कीर्तन गुण गाओ तन हर भगत तन करण हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार भैरो महला पंजवां गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मह लई दीन दयाल सदा किरपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद घने साध संग मिटे भय भरमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत खिन मह बिन स्यो महापरेत आठ पहर हर हर जप जाप राखन हार गोविंद गुरे आप अपने सेवक को सदा प्रित पारे भगत जना के सास निहारे मानस की कहो केतक बात जम ते राख दे कर हाथ।

करन कारण समरथ गुर मेरा, जी प्राण सुख दाता नेरा, पै भंजन अवनासी राय, दर्शन देखे है सब दुख जाए, जत कत पेखो तेरी सरना, बल बल जाई सतगुर चरना, रहाऊ पूर्ण काम मिले गुरुदेव, सब फल दा

पूरन मन पाणी जल थल महियल रव्यास होए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माहे अकेला। जात अजात जपै जान कोई, जो जापै तिसकी गत होए।

जन धन पैरु महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भय बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाई।

नित सुख प्रतपाल अपने दास कहो दे राखे हाथ निमख न छोड़े सद ही साथ हर सा प्रीतम अवर न कोए सार संभाले साचा सोए मात पिता सुत बंद नारायण आदि जुगाद भगत गुण गायन तिसकी धार प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं होर नानक कै मन एहो परखारथ प्रभु हमारा सार।

पिंड तन तिसकी रास, सोई मेरा स्वामी करन हार, कोट बार जाई बलिहार, साधु तूर पनीत करी, मन के विकार मिट है प्रभ सिमरत, जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ, जाके ग्रह मह सगल निदान, जाकी सेवा पाई है मान, सगल मनोरथ पूरन हार, जी प्राण भगतन आधार, कट कट अंतर सगल परगास, जप जप जीव है।

प्रभु ते आया, गुरपूरे डर सगल चुकाया, सब ते वड समरथ गुरुदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव, रहाउ जाका किया सब किछ होए, तिसका

सब लगरी मह भगत बिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरई, मेरे अंतर गुर गोपाला, कीता हुआ श्री की करे, अनहोंदा ना उतराया, जो तुर लिखिया सो आई पहुता, जन स्यो वाद रचाया, पिता प्रहलाद स्यो गुरजे उठाई, कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई, जग जीवन दा

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान बिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है सुमाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

वढ़ियाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काट है, दुबदा रती ना राई। हम मूड मुगद किस बूझ नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद पावै सोई करसी, अवर न करना जाई। जगत अपाए तुद

सूझै दुर्मत अज्ञान अंधारा भवजन पार न पावह कबही डूब मुए बिन गुर सिर पारा साचे शब्द रते जन साचे हर प्रभ आप मलाई गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे निवलाए तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर कै शब्द विचारे नानक तिन कै सद बलिहारे राम नाम उर तारे भैरों महला पंजवा अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए इस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता जिस नाम हृदय तिन नौ निध पाई नाम बिना भ्रम आवै जाई जिस नाम हृदय सो वे परवाहा जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा जिस नाम हृदय तिस वड परवारा नाम बिना मनमुख गवारा जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन जिस नाम हृदय सो साचा साह नाम हीन नाही पत वे साह जिस नाम हृदय सो सब मह जाता जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता जिस नाम हृदय सो सब ते ऊचा नाम बिना भ्रम जोनी मूचा जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा जिस नाम हृदय सो पुरख परवान नाम बिना फिर आवन जान तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल साध संगत मह लखे गोपाल आवन जान रहे सुख पाया कहो नानक तत्तै तत् मलाया भैरू महला पंजवां कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो धनी गोविंद।

नाम चार कोट पुजारी करते पूजा कोट विस्थारन अवर ना दूजा कोट महमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस कोट परलो ओपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथह ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया घट अंतर जामी।

विनोद चोज अनंता, नानक को प्रभ मिलियो अचिंता। कहो नानक कीरत हर साची, बहुर बहुर पिस संग मन राची। रहाओ अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ। अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार। अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे। अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता। अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा। अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत। अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर। अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा। अचिंत मिटियो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा। अचिंत हमारे अनहत वाजै, अचिंत हमारे गोविंद गाजै। अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना। अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक। चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई। भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

राम राजा नौ निध मेरे संपहित कलत धन तेरे रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कत है ना जाई, रहाऊ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो।

पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा आप खोज को।

जो निर्तन सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन दो

गुर सेवा ते भगत कमाई तब एह मानस देही पाई इस देही को सिमरह देव सो देही पज हर की सेव भजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेहे रे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब पाई।

रावी ऊपर गहरा ख्या चंद पच्छम द्वारे सूरज तपे मेर डंड सिर ऊपर बसे पश्चिम द्वारे।

करे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सतर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

सदा पिखारी, द्यों जवाब हुए बजगारी। दास कबीर तेरी पनाह समाना, पिसत नजीक राख रहमाना। सब

गढ़ बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर

कीता। अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल। खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया स्थान तीन त्रया खंडा। अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार न पावे को धरनी तर मंत। कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास। द्वादस दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत। अर्ध उर्द मुख लागो कास, सुन मंडल मह कर परगास। ऊहा सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। जो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर इशनान।

मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जाकै परगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जाकै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट बेद उच्चरे, जो जाच्यों तो केवल राम।

पवन कोट चौबारे फिर है, बासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अठारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिरह, इंदर कोट जाके सेवा करह, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लट छूटी वरतै बिकराल, कोट कला खेलै गोपाल, कोट जग जाके दरबार, गंधर्व कोट करह जयकार, विद्या कोट सब

पर हरी ताकै निकट बसै नर हरी जो ना पुजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाऊ जिनकै भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामे दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगै धरी एक भगत मेरे हृदय बसै नामे देख नारायण हसै दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन भया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करो श्रृंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाऊ।

संडा मर का जाए पुकारी, पड़े नहीं हम ही पाचहारी। राम कहे करताल बुझावे, चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे, हृदय हर जी को सिमरन तरे। रहाउ बसदा बस कीनी सब राजी, बिनती करे पटराणी।

ना तर गर्दन मारो ठाए, बादशाह ऐसे क्यों होए, बिस्मिल किया न जीवै कोई, मेरा किया कछु न होए, कर है राम हुए है सोए, बादशाह चढ़ो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार, रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना भजै खुदाए, ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजहो ना आयो त्रे पवन धनी पाखन तन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह ता धरन अको

भरे जब मटकी भरी, ले बादशाह के आगे तरी। बादशाह महल में जाई, औकट की कट लागी आई। काजी मुल्ला बिनती फुरमाए, बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय। नामा कह सुनो बादशाह, एहो किस पति।

वैकुंठ तरै जो गुर देव ता जीवत मरै सत सत सत सत सत गुर देव झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाव जो गुर देव ता नाम बिरडावै जो गुर देव ना दह दिस तावै जो गुर देव पंच ते दूर जो गुर देव ना मरगो झूर

फल कारण फूली बनराए, फल लागा तब फूल बुलाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास। कृत कारण दद मथे सयान, जीवत मुकत सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अपाग। नाम देव आओ कलंदर केसवा, कर अबदाली भेसवा रहाउ। जिन आकाश कुलह सिर कीनी, कौसै सपत पयाला। चमर कोस का मंदर तेरा, एह बिद बने गोपाला। छप्पन कोट

काजी मुल्ला हुवै सेख, जोगी जंगम भगवे पेख, को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ी अस बंद, जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर होवग सार, हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत भंडार, बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग, जटा धार।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जाको तू रख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब दुख

आओ जन नानक हर गुर गुर मलाओ बसंत महला पहला मेरी सखी सहेली सुनो पाए मेरा पिर रिसालू संग साए ओह अलख ना लखिया कहो काए गुर संग दिखायो राम राय मिल सखी सहेली हर गुण बनी हर प्रभ संग खेलह वर कामन गुरमुख खोजत मन मने रहाओ मन मुखी दुआगण नाहि भेउ ओह घट घट रावै सर्ब परेउ गुरमुख थिर कीनै संग देउ गुर नाम दृढ़ाया जप जपेउ बिन गुर भगत ना पाओ होए बिन गुर संत ना संग दे बिन गुर अंदले धंद रोए मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए गुर मन मारिउ कर संयोग एहन सरावे भगत जोग गुर संत सभा दुख मिटै रोग जन नानक हर वर सहज जोग बसंत महला पहला आपे कुदरत करे साज सच आप नबेड़े राज राज गुरमति उत

अपरंपरे अगमय गोचर गुरमुख हर आप तलाए अतुल तोल रहाउ गुर चरण सरे वह गुर सिख तोर गुर सेव तरे तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव ना पाई से चोर चोर गुर तुठा बख्शे भगत पाओ गुर तुठै पाई हर महल ठाउ पर हर निंदा हर भगत जाग हर भगत सुहावी कर्म भाग गुर मेल मलावै करे दात गुर सिख प्यारे दिन सरात फल नाम प्रापत गुर तुस दे कहो नानक पावह बिरले के बसंत महला तीजा इक तुका साहिब पावै सेवक सेवा करै जीवत मरै सब कुल उदर है।

अमृत नामा महला पहला बसंत हंडोल घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बिप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो दया करहु दयाला काहे कलरा सिंचो हो जन्म गवावो काची तहग दवाल काहे गच लावो रहाओ कर हरहत माल टिंड परोवो तिस भीतर मन जोवो।

न खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर किरपा हर भगत दृढ़ाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलै रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरे।

सेव परम सुख पावे आत्म देव रहाउ कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उच्चरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार उपाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों पावे त्यों राखे सोई।

बहुर पछताना बिसरत मलाए गुर सेवरांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौं मैं रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वडभागी तारी जन नानक उर हर अमृत तारी।

हर मन माही, मर मर जम्मह पी मर जाही। से जन जीवे जिन हर मन माही, साच सुमल है साच सुमाहि रहाउ। हर ना सेवह ते हर ते दूर, दसंतर भवह सिर पावह धूर। हर आपे जन लिए लाए, तिस सदा सुख है तिल ना तमाए। नदर करे चूकै अभमान, साची दरगाह पावै मान। हर जियो वेखै सद हजूर, गुर कै शब्द रहया परपूर। जी जंत की करे प्रतपाल, गुर प्रसादी सद संभाल। दर साचै पत सिउ घर जाई, नानक नाम वडाई पाई। बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मन ते होए। एको वेखै और ना कोई, दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव, आपे सतगुर मेल मलाए, जग जीवन स्यो आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाए, नानक नाम रहे लिव लाए। बसंत महला तीजा, भगत वचल हर वसै मन आई, गुर कृपा ते सहज सुपाई, भगत करे विचों आप खोए, तद ही साच मलावा होए। भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार, गुर कै हित साचे प्रेम प्यार रहाउ, भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विचों हो मैं खोए। हर जियो आप वसै मन आए, सदा शांत सुख सहज समाए, साच रते तिन सद बसंत, मन तन हरिया रव गुण गोविंद। बिन नावे सूका संसार, अग्न तृष्णा जले वारो वार, सोई करे जे हर जियो पावे,

सोए, नाम रता जन प्रगट होए, एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचै पाए, साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा हुए, जिन साच सेवया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, पगत करह जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई।

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा हुए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

बहु अभमान अपनी पत खोए, सेवद भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया, घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजह शब्द बीचारा, नाम नव निध पाई घर ही माही, सदा रंग राते सच समाहे, आप करे किस करण ना जाए,

पावनहारा बसंत महला तीजा एक तुके तेरा किया किरम जंत देहे तां जापी आदि अंत गुण आख विचारी मेरी माए हर

होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर भेटै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहु मलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाउ मन बसंत हरे सब लोए फलह फुलियह राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखै उर तारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरै भाग हर भगत कराए इस मन को बसंत की लगै ना सोए एह मन जलिया दूजै दोए रहाओ एह मन धंदै बांधा कार कमाए माया मूठा सदा बिन लाए एह मन छूटै जां सतगुर भेटै जम काल की फिर आवै ना फेटै एह मन छूटा गुर लिया छडाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बनराए एह जी जंत फूलह हर चित लाए इन बिद एह मन हरिया होए हर हर नाम जपै दिन राती गुरमुख हों मैं कड़ै तोए रहाउ सतगुर बाणी शब्द सुनाए एह जग हरिया सतगुर पाए फल फूल लागे जा आपे लाए मूल लगै ता सतगुर पाए आप बसंत जगत सब वारी नानक पूरै भाग भगत निराली बसंत हंडोल महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर की बाणी बिटोह वारिया पाई गुर शब्द बिटोह बल जाई गुर सलाही सदा अपना पाई गुर चरणी चित लाई मेरे मन राम नाम चित लाई मन तन तेरा हरिया होए एक हर नामा फल पाए रहाओ गुर राखे से उबरे पाई हर रस अमृत पियाई विचों हों मैं दुख उठ गया पाई सुख बुठा मन आई तुरे आपे जिन्ना नू बख्शियों पाई शब्दे लयन मलाई धूड़ तिन्ना की अकुलिया पाई सत संगत मेल मलाए आप कराए करे आप पाई जिन हरिया किया सब कोए नानक मन तन सुख सद वसै पाई शब्द मलावा होए राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत त्यों घट घट रमैया ओत पोत एको हर रविया सर्ब थाए गुर शब्दी मिलिया मेरी माए रहाओ घट घट अंतर एको हर सोए गुर मिलिया एक प्रगट होए एको एक रहिया भरपूर साक्त नर लोभी जान है दूर एको एक वरतै हर लोए नानक हर एको करे सो होए बसंत महला चौथा रैन दिन सदोए सदे पए मन हर सिमर हो अंत सदा रख लए हर हर चेत सदा मन मेरे सब आलस दुख भंज प्रभ पाया गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाओ मनमुख फिर हों मैं मुए काल दैत संघारे जमपुर गए गुरमुख हर हर हर लिव लागे जन्म मरण दो दुख भागे भगत जना को हर कृपा तारी गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदर एक लुकानी सतगुर मिलै ता खोजिए मिल ज्योति ज्योत समानी माधो
साधु जन देहो मलाए, देखत दर्स पाप सब नासह, पवित्र परम पद पाए रहाउ। पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया। पाखंड भरम अपाव कर थाकी, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया, अज्ञान अंधेर गवाया। जगन्नाथ जगदीश गुसाई, कर कृपा साध मलावे, नानक शांत होए मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे। बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुमन से, हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन से, गोविंद जियो सत संगत मेल कर कृप से, जन्म जन्म के किल विक मन भरिया, मिल संगत कर प्रभ हंसे रहाउ। तुमरा जन जात अव जाता, हर जप्यो पतत पवीसे, हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सोभा हर प्रभ दिन से, जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से तन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे, हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे, जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै, नित हर हर नाम रस गीदे, जो बारक रसक परयो थन माता, थन काढ़े बिलल बलीदे। गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे, वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाउ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीते, ज्यों जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीते, जन्म जन्म के हम मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरहो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर भावे सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, तिल घर नहीं वासा पाईए, गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो, घर मंदर आन वसाईए। गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईए, हो मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाईए रहाउ। कर रतन लाल बहुमानक लादी, मन भ्रमिया लह ना सकाईए, ज्यों ओडा कूप गोहज खिन काढ़े, त्यों सतगुर वस्त लहाईए। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईए, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदलै जाइए। मध सूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाइए। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाइए। बसंत हंडोल महला चौथा, आवन जान पया दुख बिखिया,

दुख पानी हर उस्तत धारु हो रे दे अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लानी हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटो घुम वानी जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हो हर लानी जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर भानी।

देव बिरख जम्यो है पार जात फूल लगे फल रतन पांत तृप्त अगाने हर गुण गाई जन नानक हर हर हर त्याई।

तिस साध बसंत जिस हृदय नाम ग्रह ताके बसंत गनी जां कै कीर्तन हर धुनी रहाउ प्रीत पार ब्रह्म मौल मना ज्ञान कमाइए पूछ जना सो तपसी जिस साध संग साध ध्यानी जिस गुरह रंग से निरभउ।

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रह समाए जा के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के भगत को नाही पै जा

कैसे उदाहरण गुर है पीर, तुम दाते प्रब देन हार, निमक निमक तिस नम शिकार रहाऊ, जिसह परापत साध संग, तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग, ते बंधन ते भये मुकत, भगत अरादह जोग जुगत, नेतर संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन अगानार रसह स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो एहो निदान, बसंत महला पंजवा, तुम बड दाते दे रहे, जी प्राण मह रव रहे, दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

मीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग हो हे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु ना होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

जिसके धारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद पुरख जिसकी आदान तिसको मिलिया हर निदान तिसकी गत मिट कही ना जाए नानक जन हर हर त्याय बसंत महला पंजवां मन तन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किल विख काटे साध संग नाम जपियो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय उरतारी सदा सदा हर जस सुना।

देश, जह गोविंद भगत सो धन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करनहार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो।

जन प्रभु आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताए, किरत ओना का मिटस नाहे, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतने आप,

पंजवां गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवै बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवै जावै रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया रब मेले चिरी वछुनिया तुम रबहु गोबिंद रमण योग जित रवै सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होआ साध तूर नित देखै स्वामी हजूर काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई।

सदब संत गुरपुरे की सरणी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाऊ, सोग संताप कटे प्रभु आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगता भली रीत, सुखदाता जप दे नीत नीत, बसंत महला पंजवा, हुक्म कर कीने निहाल, अपने सेवक को पया दयाल, गुरपुर

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इशनान करहो प्रभाते, सोए हर अरादे, बिखड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते, हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जेन बाजी घर आया, बसंत

ना सकल बनासी मनते निज सुख माहि समाया जान को होत दयाल कृपा निद सो गोविंद गुण गावे कहो नानक एह बिद की संपै को गुरमुख पावे बसंत महला नौवां मन कहां बसारियो राम नाम तन बिनसै जम स्यो परै काम रहाऊ इहो जग तुएं का पहार तै साचा मानिया केहे विचार तन दारा संपत गृहे कश संग ना चालै समझ ले एक भगत नारायण होए संग कहो ना।

संग तेरा हर बसत नीत निसबासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया एक

गाछुह पुत्री राज कुवार नाम भणुहु सच दूत सवार प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिख त्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन भूलो भरम से आए जाए अत लुभ लुभानो बिखम माए नह अस्थर दिसै एक पाए ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन भूलो समझस साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ मन भूलो परमस पवर तार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार मैगल ज्यो फासस काम हार कर बंधन बांधे।

सब दुख सखाई गुण है बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हर रस राते पत ना साख, तू आपे सुरता आप राख, तर धारण देखे जाने आप, आप भलाए किस कहो जाए, गुरमेले बिरथा कहो माए, अवगुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सतगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो मैं कदै धोए, सदा मुक्त बंद ना सकै कोई, सदा नाम वखाणै और ना कोई, मन

कदे नाही गुर शब्द सुनाए मत अगाए तू मोटो ठाकर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर हुए एकत राचै पर हर दुए दूर दर्द मत अमृत खाए गुरमुख बूझै एक समाए तेरे दर्शन को केती बिल लाए।

हर भगती सच नाम पतीना रहाऊ औखद कर थाकी बहु तेरे क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे बिन हर भगती दुख कनेरे दुख सुख दाता।

बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अंदुलीकार मन मुख पर मैं मज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना भागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख चौरासी जनते पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस गुर करता।

थाप आपे बशरु गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करनहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करनहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करन जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिखदारी।

मार पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नजर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवत्या कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सबना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करहंगी कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर न रहाई अनक अपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज समाया राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई जे सब साकत करह बखीली एक रत्ती तिल ना कटाई जन की उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सकै तिल अपने घर लूकी लाई जन को जन मिल सुबा पावे गुण मह गुण परगासा मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारी जो हो दासन दासा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मलावे नानक गुरमुख सहज मलाई ज्यों जल जल है समावे बसंत महला पंजवा घर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मल

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाऊ गनका उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होए दास जय

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म भ्रमे जोन माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत सात शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम तो नह संगाई बिख का माता आवै जाई हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार काम क्रोध मन वस किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन का

संगहि चोर कर मुसन लाग रहाउ जागै सुख देओ अर अकूर हनुमंत जागै तर लंकूर शंकर जागै चरण सेव कल जागे नामा जय देव जागत सोवत बहु प्रकार गुरमुख जागे सोई सार इस देही के अधिक काम कह कबीर पज राम नाम जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ सुत मकलाई अपनी माओ रहाओ पगा बिन हुरिया मारता बदले बिन खिर खिर हासता निंद्रा बिन नर पैसो है बिन बासन खीर बलोवै बिन अस्थन गऊ लवेरी पैंडे बिन बाट कनेरी बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई प्रहलाद पठाए पढ़न साल संग सखा बहु लिए बाल मोको कहां पढ़ाव से आल जाल मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यों नहीं काम रहाओ संडै मर के कहो जाए प्रहलाद बलाए बेगताए तू राम कहन की छोड़ बान तुझ तुरत छडाऊ मेरो कहो मान मोको कहां सताव हो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार एक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार काड खड़ग को प्यो रिसाई तुझ राखनहारु मोहे बताए प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार हरनाक्ष छेदे हो नख बेदार उए परम पुरख देवाद देव भगत हेत नरसिंह पेव कह कबीर को लखै ना पार प्रहलाद उधारे अनक बार इस तन मन मधे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बेगूतो मैं को आहे माधो दारण दुख सहयो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभ कमल जाने ब्रह्माद कब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर।

जन्म मरण दुख आस तीर, सुख सागर गुण रौं कबीर। नायक एक बनजारे पांच, बरद पचीसक संग काच। नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे। मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज। रहाउ सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन। तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार। पूंजी हैरानी बनज टूट, डह दिस टांडो गयो फूट। कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता भरम पाज। बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे। आवह जूठे जाहे भी जूठे, जूठे मरह अभागे।

सतगुर मैं बलिहारी टोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी

है कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा लोग

अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कछु नाही, पहरावा देखे ऊब जाए। गर्भ

साध न फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाउ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पोयंगम घर पेर तन सोहागै। कुचिल करूप कुनार कुलखनी फिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा रहाउ। इन विद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी। जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको हिंसा लोभ बसारे। सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सुवारे। जारो ऐसी प्रीत कटंब सलबंदी माया मूप सारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संत जना की हम तूर मिल सत संगत परम पद पाया। आत्म राम रहया भरपूर रहाउ। सतगुर संत मिले शांत पाईए किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डै भाग सत संगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर। अठ सठ तीरथ मज्जन किया सत संगत पग लाए धूर। दुर्मत बेकार मलीन मत होशी हिरदा कसुद लागा मोह कूर। बिन कर्मा क्यों संगत पाईए हों मैं व्याप रहया मन चूर। हो दयाल किरपा कर हर जी मांगो सत संगत पग धूर। नानक संत मिले हर पाईए जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा गोबिंद चरणन कौ बलिहारी। भवजल जगत न जाई तरना जप हर हर पार उतारी रहाउ। हिरदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी। हर दिन राम नाम जप हिरदय।

तारी अंतर हर नाम सर्व धरनी तार साकत को दूर भया अहंकारी तृष्णा जलत न कबू बूझ जुह बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावह गुर किंचित कृपा तहारी नानक जिनको नदर पई।

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाऊ। जो जन दीन भये गुरु आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरु आगे गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया ओए पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलहा मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। किस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै पाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रवे आ स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाय। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्तै शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाए। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए।

प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख मिलया सुख।

तै हर हर पानी पंच जना गुर वसगत आनी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी।

चालै झूठ छोड़ जाए पासार। नानक संत सदा थिर निश्चल जिन राम नाम आधार। सारंग महला चौथा कर तीजा धुपदा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद काहे पूत जगरत हो संग बाप। जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यो जगरत पाप। रहाओ जिस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसह न आप। खिन मह छोड़ जाए बिख्या रस तौ लागे पछताप। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी हर तिन के जाप हो जाप। अपदेश करत नानक जन तुमको जो सुनो तौ जाए संताप। सारंग महला चौथा कर पंजवा दो पदे पड़ताल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन सब रात। रहाओ हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत। सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर स्वामी। तू आपे ही जान है अपनी भांत। हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात।

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआ पाऊ, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को हर दर्शन को, कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ। हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि इनका सब दुख भरम पहु जासी। जन नानक नाम लए ता जीवे ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी। सार महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम। बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ। राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे। जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय। सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संत हो। जो भगत जना की पात राखे विच कल युग अगे। जन नानक का अंग किया मेरे राम राय। दुश्मन दुख गए सब भगे सारंग महला पंजवा चौपदे घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त कहो बल जाऊ। अंतर प्यास चात्रक ज्यो जल की सफल दर्शन कद पाऊ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रत पालक भगत वच्छल हर नाऊ। जा को कोई न राखे प्राणी तिस तू देहे असराऊ।

तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। सारंग महला पंजवां, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते

करह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान। सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान। क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की।

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुआर कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यों कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लौ बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब यो हो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीव है सगली औध बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजै साध संगत किरपानंद नानक पूर रहो है सर्व मैं सगल गुणा बिद जानंद सार महला पंजवा अब मोहे राम पुरुषो पाई जो जो सरन परयो करना निद ते ते भवह तराई रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाई जो चाहत सोई हर कियो मन बाछत फल पाई हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाई करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाई देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराई पायो लाल अमोल नाम हर छोड़।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुशकार गिरियो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर पारे निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके गुवारे कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अंध अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो प्राप्त जा कह लेख मथामा सार महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लही है रहाउ आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घटवासी गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वड भागे।

कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्ब मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवां बलिहारी गुरदेव चरण जाकै संग पार ब्रह्म त्याई है अपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासी जो आवे हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावे वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे कहो सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसह अगाने सहज समानी मुख ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन सारंग महला पंजवां गायो री मैं गुण निद मंगल गायो भले संयोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो रहाओ संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साध है मंत्र मोर लो मनुआ।

भेद नाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन न रह बहु विद उमकाई, रहाऊ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी, कद पावो हर दरसाई, जतन करो एहो मन नहीं धीरे, को है रे संत मलाई, जप तप संयम पुन सब होम, तिस अर्पो सब सुख जाई, एक निमक प्रिय दर्शन खावे, इस संतन कै बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती, सेवो दिन रह नाई, मान अवमान हो सगल त्यागो, जो प्रिय बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन, गुर सतगुर पुरख मलाई, प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया, जन नानक तपत बुझाई, सारी महला पंजवा, रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर मह उर्द तप करता, निमख निमख गुण गाही, रहाऊ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु, मानस जन्म दुलपाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो, तो लागो अनठाही, करह बुराई ठगाई दिन रहन, निफल कर्म कमाही, कण नाही तुहो गाहन लागे, ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो, उर्ज पर्यो कुसमाही, धर्म राय जब पकरस बबरे, तो काल मुखा उठ जाही, सो मिलिया जो प्रभु मलाया, जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अलिप रहे मन माही, सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिसरत होत मृत का, ग्रह मह रहन ना पाई, रहाओ जी ही प्राण को दाता, जा कै संग सुहाई, करहु कृपा संतो मोहे अपनी, प्रभ मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर, नैन हो तूर बाशाई।

अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की था हरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सार महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याय रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो हुए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक बिन नाही को दूजा आनना बियो लवे लाए मात पिता पाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यों गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप मह ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांछे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलक सुख साध समागम।

पतित के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा। कहो नानक पाईए वडभागी, मन तन हुए बिगासा। सारंग महला पंजवा, दो पदे घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मोहन घर आवो करो जो दरिया। मान करो अब मान है बोलो, भूल चूक तेरी प्रह चिरिया। रहाओ निकट सुनो अर पेखो नाही, परम परम दुख परिया। होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया। एक निमख जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलख बरिया। साध संगत की पीर जो पाई, तौ नानक हर संग मिरिया। सारंग महला पंजवा, अब क्या सोचो सोच बिसारी। करना सा सोई कर रहिया, देह नाओ बलिहारी। रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख, गुरमंत्र मूख गरुड़ारी। हाथ दे राख्यो कर अपना, जो जल कमला अलपारी। हो नाही किस मैं क्या हुसा।

जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना। तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना। पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना। सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा। बिसरयो धंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ। हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सतसंगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोग नसंगा। निरपौ भए नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी। रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी। जे घर मैं बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी। उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन मान।

दर्शन देख पए मने आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानथ पए लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा सारंग महला पंजवां अब मेरो ठाकर स्यों मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यों जल मीना रहाओ राम क्रोध लोभ मद मत सर एह अर्प सगल दान कीना मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवां मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ए कूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है सारग महला।

तेते दुख सहमा गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है तू है एक नाम तेरा मैं भोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सार महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समर्थोहं सारं महला पंजवा नैनहु देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट।

गासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजो नी संभव सर्व थान कट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्रभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग न लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमक बचन प्रभ हियर बसेओ सगल

द्वितीयास बराथे नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सो।

चतुर अनूप बधाते किस स्यों रुच नहीं राय मोहन स्यों बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई पयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई सगल निदान करै मह पाए कहो नानक जोत समाई सारंग महला पंजवा वंग प्रिय प्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ हम भूले हैं तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैलागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपर

सतगुरु सरण पया रहाउ, सर्ब सिद्ध कार्य सब सवरे, अहंग रोग सगल ही खया, कोट पराद खिन मह खो पई है, गुर मिल हर हर कहया, पंच दास गुर वसगत कीने, मन निश्चल निर्भया, आए ना जावे ना कत ही डोले, फिर नानक राजया, सार महला पंजवा, प्रभ मेरो केते उत सदा सहाय, मन मोहन मेरे जी को प्यारो, कमन कहा गुन गाई रहाओ, खेल खलाए लाड लडावे, सदा सदा आनंदाई, व्रत पाले बारक की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकी है, बिसरना कब हूं जाई, कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई, सारंग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाईए, आसना अवर काहू की कीजे, सुखदाता प्रभ त्याईए रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसह कर, तिस ही सरणी पाईए, किसह त्याग मनुख जे सेव हो, तो लाज लोन होए जाईए, एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मेल मत बुद्ध पाईए, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताई है, सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जीओ मेरे, दृष्ट ना लियावो अवर काहू को, मान महत प्रभ तेरे रहाओ, अंगीकार कियो प्रभ अपने, काड लिया बिख केरे, अमृत नाम औखद मुख दीनो, जाए पया गुर पैरे, कवन उपमा कहो एक मुख, निर्गुण के दा तेरे, काट सिल्क जाओ अपना कीनो, नानक सुख कनेरे, सारंग महला पंजवा, प्रभ सिमरत दुख बनासी, पयो कृपाल जी सुखदाता, होई सगल खलासी रहाओ, अवर न को सूजै प्रभ बिन, कहो को किस पह जासी, ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर, सब किस तुम ही पासी, हाथ दे राखे प्रभ अपने, सद जीवन अबनासी, कहो नानक मन आनंद भया है, काटी जम की पासी, सारंग महला पंजवा, मेरो मन जत कत तुझह सुमहारे, हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे, ज्यों जानह त्यों पारे रहाउ, जब भूखो तब भोजन मांगे, अघाए सुख सघारे, तब अरोग जब तुम संग बसतो, छुटकत होए रवारे, कमन बसेरो दास दासन को, थापियो थापन हारे, नाम न बिसरे तब जीवन पाईए, बिनती नानक एह सारे, सारंग महला पंजवा, मन ते पै पौ दूर परायो, लाल ब्याल गुलाल लाडले, सहज सहज गुण गायो रहाव, गुर बचनात कमात कृपाते, बहुर न कतहू तायो, रहत उपाद समाद सुख आसन, भगत वच्छल ग्रह पायो, नाद बनोद कोड आनंदा, सहजे सहज सुमायो, करना आप करावन आपे, कहो नानक आप आपायो, सार महला पंजवा, अमृत नाम मनह आधारू, जिन दिया तिस कह कुर्बान, गुरपूरे नमस्कारु रहाउ, बूझी तृष्णा सहज सुहेला, काम क्रोध बिख जारू, आए ना जाए बसै एह ठाहर, जह आसन निरंकारु, एक प्रगट एक गुप्ता, एक तुंडू कारु, आदमा अंत प्रभ सोई, कहो नानक साच बीचारु, सारंग महला पंजवा, बिन प्रभ रहन ना जाए करी, सर्ब सुख ताहू कै पूरन, जा कै सुख है हरी रहाओ,
मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत आनंद कना वड समरथ सदा सद संगे गुण रसना कमन पना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारी कहो नानक ते पवन पवित्रा जा मह संत तुम्हारी सारंग महला पंजवा रसना जपती तू ही तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक तू

किन्हीं बाप महतारी सर्ब थोक नानक गुर पाए पूरन आस हमारी सारंग महला पंजवा झूठो माया को मदमान त्रोहो मोह दूर कर बपरे संग गोपाल लह जान रहाव मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संत है की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारी महला पंजवा।

सह संगी ऊहा नाही जह पारी तिन सिंह राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी करन करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवां मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाओ खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गवन ना थोरी पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना छोरी अंध कूप मह पतत होत जग संतो हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारिंग

आओ ऊहीं ते हरेउ ऊहां ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाकली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस।

मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरे तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राखो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग पाइये वडभागी नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवां।

तुम तारी समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई जो जो संग मिले साधु कै ते ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जन आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारू नायो रहाओ कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जाको छायो।

आन अपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद तारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक अंकार सब ते ऊच ठाकुर नानक का बार बार नमस्कार सारंग महला पंजवा बिन हर है को कहां बतावहु सुख समूह करुणा मैं करता तिस प्रभ सदा त्यावहु रहाउ जा कै सूत परोए जनता तिस प्रभ का जस गावहु सिमर ठाकुर जिन सब किश दीना आन कहां पह जावहु सफल सेवा स्वामी मेरे की।

समाये आनंद आनंद गुण गाया बाहां पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया कहो नानक गुरबंधन काटे बिचरत आन मलाया सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाव सेव ब्रंच अर इंदर लोक तामह जल तौ फिरिया सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उच्चर हो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन तन संचो मन तन लाभ हो पाओ आन बेभूत मिथ्या कर मन हो।

वाणी रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अरद हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे, देहें ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पहानी। सारंग महला पंजवां, तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाटो, गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ो हो कपट होए निर्वैरा, सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जो हो, सच तन संचो हो, कबहू ना आव हो हारी। खात खर्चत किसन खुटत नाही, अगंत भरे पंडारी। कहो नानक सोभा संग जाव हो, पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवां, प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा, कमन मून ते मनुख करिया।

सर्व प्रतपालक सर्व कटां आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा। सारंग महला पंजवां, आवे राम सरन बड भागी, एक सबिन किस होर न जाने। अवर अपाव त्यागी रहाउ, मन बच क्रम अराधे हर हर, साध संग सुख पाया। आनंद बनोद कथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है, जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु सरन गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाउ, हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही, आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत, पायो लाभ सही। जहते उपजेओ तही समानो, साई बस्त आही। कहो नानक परम गुरु खोयो, ज्योति ज्योत समही। सारंग महला पंजवा, रसना राम को जस गाओ, पान स्वाद विसार सगले। भलो नाम सुआउ रहाओ, चरण कमल बसाए हृदय, एक स्यों लिवलाओ। साध संगत होहे निर्मल, बहुड़ जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा, तून थावे थाओ। सास सास समाल हर हर, नानक सद बल जाओ। सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ। मुक्त पदार्थ साधु संगत, अमृत हर का नाओ रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, माया करो भगवान। आवत जात दो पख पूरन, पाइये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचारियो, भगत श्रेष्ठ पूरी। कहो नानक एक राम नाम बिन, अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नासह। चरण कमल बलिहारा रहाउ, सत परमेश्वर सत साध जन। निश्चल हर का नाऊ, भगत भावनी पार ब्रह्म की। अविनाशी गुण गाओ, अगम अगोचर मित नहीं पाईए। सगल घटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ताको, जां का अंत ना पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई। निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम निवलाई। संत संग बने आई, जन्म पदार्थ भयो पनीता, इच्छा सगल पुजाई। जां को कृपा करहु प्रभ मेरे, सो हर का जस गावे। आठ पैर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन तो गनी है हर पेखा, करहु कृपा प्रीतम मन मोहन। फोर परम की रेखा रहाउ, कहत सुनत किश शांत ना उपजत। बिन बसास क्या सेखा, प्रभु त्याग आन जो चाहत। तां कै मुख लागै का लेखा, जां कै रास सर्व सुख स्वामी। आन न मानत भेखा, नानक दर्श मगन मन मोहयो, पूरन अर्थ बेसेखा। सारंग महला पंजवा, सिमरन राम को एक नाम, कलमल दग्ध होहे खिन्यंतर। कोट दान इशनान रहाओ, आन जंजार वृथा श्रम कालत। बिन हर फोकट ज्ञान, जन्म मरण संकट ते छूटै। जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूर्ण सुख सागर। कर कृपा देव दान, सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै, बिन सजाए अभमान। सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे तुर को लागै,
सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाओ। बलबंच करे ना जाने लाभ है सो धूरत नहीं मूड़ा। स्वार्थ त्याग असार्थ रचियो नह सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना। साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवां हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर। राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना। मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पए मन लाला। राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उर जानो।

काम को बल होए, सगल मनोरथ पूर्णता होके, दुख ना व्यापै कोई रहाओ। जो जन भगत दास निज प्रभ का, सुन जीवा तिस सोए, उद्म करो दर्शन पेखन कहो, कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो, दूसर नाही कोए, दान दे नानक अपने को, चरण जीवा संत होए। सारू महला पंजवा, जीवत राम के गुण गाए, करहु कृपा गोपाल बीठले, बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब तुम।

पायठ गौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है कीरा वार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप पुलाया बिखैठ गौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवे जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याय परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी

ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवक अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवां कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर गइया खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कस ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गैया हाट किल बिख करत करत पछताव है कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारे हो देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जानकार राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत प्रतिहार रहाउ सांत सूख न सहज उपजे यह इस व्यवहार।

अल्लाह पंजवा रे पापी तैं कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया नाम सिमरत कीन गर्भ उदर बिललाट करता तहां होवत दीन महामाद विकार भांदा अनक जोन परमीन गोविंद बिसरे कवन दुख गनी है सुख नानक हर पद कीन सारंग महला पंजवा माई रे चरण है उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही रहाओ अगह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात ना कही जल थल पेख पेख मन बिगसेओ पूर रहयो सब मही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना पही सारंग महला।

माईरी मन मेरो मतवारू पेख दयाल आनंद सुख पूरन हर रस रपियो खमारू रहाऊ निर्मल पये उजल जस गावत बहोर न होत कारू चरण कमल स्यो डोरी राखी भेट्यो पुरख अपारू कर गहलीने सरबस दीने दीपक पयो उजारू नानक नाम रसक बैरागी कुलह समूहा तारू सारी महला पंजवा माईरी आन सिमर मर जाहे त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपताहे रहाओ नाम बसार चलह अनमार्ग नरक कोर मह पाहे अनक सजाई गणत ना आवे गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की सरन समाहे गुर प्रसाद नानक जग जीत्यो बहुर ना आवह जाहे सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन पये खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीते आ बहुर ना जुए हार आठ पहर तब के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा कै हृदय वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगे दान सारी महला पंजवा बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव सारी महला पंजवा।

पर वार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारी महला पंजवा, निभहि नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखै माहे अलेप रहाओ। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रत्न जन्म अपार जीतेओ,

मन मोहिहु अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंद पह सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोबिंद बिन सेउ सब परमाद। डोरी लपट रही चरन संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा माई री माती चरण समूह। एक सबिन हो आन ना जानो दुतिया भाऊ सब लूहू रहाव। त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खू। दर्स प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तुहू। संत प्रसाद मिलो सुख दाता बिनसी हूं मैं हूं। राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू। सारंग महला पंजवा बिनसे काच के व्यवहार राम भज मिल साध संगत। यह जग मह सार रहाव। ईत ऊत ना डोल कतहु नाम हृदय धार। गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार। जल थल मही अलपूर रहो सर्वनाथ अपार। हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार। सारि महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा बिकार मोह मद मातो। सिमरत नाही हरे रहाओ साध संग जपते नारायण। तिनके दोख जरे सफल देह तन ओए जन्मे। प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध। सभी ऊपर साध भले नानक दास धूर जन बांचे। उदरह लाग पले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी। मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देख कब आखी रहाओ। तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी। वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी। जप राम नाम नानक निस्तरी है होर दुतिया बिरथी साखी। सारि महला पंजवा माखी राम की तू माखी। जह दुर्गंध तहां तू बैसह महा बिखिया मद चाखी रहाव। कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह विद देखी आखी। संता बिन तै कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी। जी जंत सगले तै मोहे बिन संता किने ना लाखी। नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी। सारि महला पंजवा मायरी काटी जम की फास। हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास। रहाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास। संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस। महा ध्यान अतवी ते काडे मार्ग संत कहियो। देखत दर्श पाप सब नास्ते हर नानक रतन लहियो। सारि महला पंजवा मायरी अरे ओ प्रेम की खोर। दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत न कोई तोर। रहाव प्राण मान पत पित सुत बंधप हर सर्बस धन मोर। त्रिग शरीर अस्त बिस्ता क्रिम बिन हर जानत होर। भयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्बला जोर। नानक सरण कृपा निध सागर बिन से आन निहोर। सारि महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी। जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए। जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए। परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए। रमण गुण गोपाल करते
नानका सच जोए। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर बसार जो आन राच है, मिथन सब विस्थार रहाओ। साध संगम भज स्वामी, पाप होवत खार, चरनार बिंद बसाए हृदय, बहुर जन्म ना मार। कर अनुग्रह राख लीने, एक नाम आधार, दिन रहन सिमरत सदा नानक, मुख उज्जल दरबार। सारंग महला पंजवा, मानी तू राम कै दर मानी, साध संग मिल हर गुण गाए, बिन से सब अवमानी रहाओ। तारे अनुग्रह अपनी कर लीनी, गुरमुख पूर ज्ञानी, सर्ब सुख आनंद कनेरे, ठाकुर दर्श त्यानी, निकट वर्तन सा सदा सुहागन, दह दिस साई जानी। प्रिय रंग रंग रती नारायण, नानक तिस कुर्बानी। सारंग महला पंजवा, त्वा चरण आसरो ईस, तुम्हें पछानू, साक तुम्हें संग।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुरु बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारण महला पंजवा कर छेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचि है हर संग संग खची है जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सरवन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संद सोच चार क्रिया कुंट निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुन गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुखो बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाही त्रास सिमर अंतर जामी एक सरन गोविंद चरण संसार सगल ताप।

टूटा जो साध संग पग रौ रहाउ दृष्टौ कस संग न जाए मान त्याग मोहा एक हर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है गुण निदान सगले आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिकम गार तोरी सारंग महला पंजवा मन बेरा गैगी खोजती दरसार रहाउ साधु संतन सेवकै प्रयोही अरै त्यायो आनंद रूपी पेख कै हों महल पावोंगी।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंध रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवां हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना चालै कहां ताहे लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन ता स्यों रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवां कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग महकू रहन ना पावे।

सह ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपन पी नाही सारंग महला नौवा कहा नर अपनो जन्म गुआवे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाव एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवा मन कर कबहू न हर गुण गायो दिखिया सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहूं मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां महन

जस जाचों मैं हर बिन रहन ना जाई रहाऊ। हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई। श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई। गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई। हो दयाल कृपा।

आई विषम भय गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई हृदय नाम सदा धुन निश्चल घटै न कीमत पाई बिन नावे सब कोई निरतन सतगुरु बूझ बुझाई प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल पई मन पहाई सहज समाद सदा निवहर सियों जीवा हर गुण गाई गुर कै शब्द रत्ता बैरागी

ऐसी गुरमत पाई। सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बने आई। नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई। सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा। कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ। क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी। अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी। चंचल मत त्याग भव भंजन पाया एक शब्द लिव लागी। हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड़ भागी। अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला। मन रत नाम रते नेह केवल आद जुगाद दयाला। मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी। साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी। गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा। शब्द विचार परम पहु पंजन अवर ना जानिया दूजा। मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अदखाई। एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया। सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथो

द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच अधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए हैं जिन

करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो।

काष्ट संगे नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझे उमाहा जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा जो किछ करना सो आपे करना मसलक काहू दीनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तैं दिए रुड़ाई मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बद साहिब कुदरत कौन बीचारा मन तन सीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक कामतेन अनक पार जात अनक मुखवेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का कश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते भय निहाल सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता कट कट पूर्ण कर विस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया अब रस माने भोग कटाने आन ना दिया कोथिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देओ कमन बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराध हो मिल कर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किस दिसे संग ना कछु हो जाई कहो नानक हर हर अराध हो कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा।
हियो अरापौ देहु संदेसा प्रभ जीओ कैसा कह मोहन परवेसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुवाया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सह जाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पह आया सारंग की वार महला चौथा राय महमे हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै अवर न कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जोग ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते हो धूड़ लेखा लिखिए मन कै पाए नानक पी जय साचै नाए महला पहला नव शेह खटका करे विचार निस दिन उचरै पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया।

हाय पौड़ी गुरमुख चलत रचाय उन गुण प्रगटी आया। गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया। सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया। जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया। नानक सहजे मिल रहे हर नाम समाया। सलोक महला दूजा साह चले बन जा रहा। लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइए वस्त संभाल। वस्त लई बनजारी वखर बद्दा पाए। के इलाहा लै चले इक चले मूल गवाए। थोड़ा किने ना मंगियो किस कहिए साबास। नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास। महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े

आए कल्ले आवह नानका सदे उठी जाए। महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोते दार कुंजी जिन को दितिया तिना मिले पंडार। जह पंडारी हूं गुण निकल है ते की यह परवान नदर तिना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनिए सुख होई सुन सुन मन वसाई है बूझे जन कोई। बहदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई भगतां को नाम आधार है नामे सुख होई। नानक मन पन रव रहिया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला नानक तुलिया है।

आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्ध दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापै रूप ना जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखने ओखा नानका आख ना जापै आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशा ते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वडे आई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

मूर्ख की गिरही का सतदान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान पानी चेतना धूपे मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकलियो कोई दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कड़ी है पशु परिया जाए अग्गे लेखे मंगे है होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिया सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिया घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिया आप बुझी है लाहा ना पावे नाए सुनिया पाप कटी है निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिया मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीवान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाईए हिरदय हर सोई नाए मने पव जल लंघिए फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। पुरिया खंडा सिर करे इक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए आप।

अवतार सिद्ध समाधि सब सुनी जाए देखा दरबार अगे सच्चा सच नाय निरपो भै विनसार होर कच्ची मती कच पिच अंधिया अंध बीचार नानक करमी बंदगी नदर लंघाए पार पौड़ी नाए मन्ने दुरमत गई मत प्रगटी आया नाओ मन्ने हौमै गई सब रोग गवाया नाए मन्ने नाम उपजे सहजे सुख पाया नाए मन्ने शांत उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया सलोक महला पहला होर शरीक होवै कोई तेरा तिस अगे तुदे आखा तुद अगे तुदे सलाही मैं अंधे नाओ सुजाखा जेता आखन साही शब्दी भाखिया पाए सुपहाई।

हर पाया गुर प्रसादी घट चानना अनेर गवाया लोहा पारस भेटी है कंचन हुए आया नानक सतगुर मिले है ना उपाई है मिल नाम ते आया जिन कै पोतै पुन है तिन्नी दर्शन पाया सलोक महला पहला त्रिग तिन्ना का जीविया जे लिख लिख वेचह नाउ खेती जिनकी उजड़ै खलवाड़े क्या थाउ सच्चै शर्म बाहरे अग्गै लह ना दाद अकल एह ना आखियै अकल गवाइयै बाद अकली साहिब सेवियै अकली पाइयै मान अकली पढ़कै बुझियै अकली कीचै दान नानक आखै राहु एहो होर गल्लां शैतान महला दूजा जैसा करै कहावै तैसा ऐसी बनी जरूरत होवै लिंग चिंग न होवै ऐसी कहियै सूरत जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कहियै मूरत पौड़ी सतगुरे अमृत बिरख है अमृत रस फलिया जिस प्राप्त सो लहै गुर शब्दी मिलिया सतगुर कै भाणै जो चलै हर सेती रलिया जम काल जोहे ना सकई कत चानन बलिया नानक बख्श मलायन फिर गर्भ ना गलिया सलोक महला पहला सच वर्त संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान इशनान दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान जुगत धोती सुरत चौंका तिलक करनी होए पाओ भोजन नानका बिरला ता कोई कोई महला तीजा नौमी नेम सच जे करै काम क्रोध तृष्णा उच्चरै दसवीं दसे द्वार जे ठाकै एकादशी एक कर जानै द्वादशी पंच वसगत कर राखै तो नानक मन मानै ऐसा वर्त रही जय पांडे होर बहुत सिख क्या दीजै पौड़ी भूपतरा जे रंग राय संचहै बिख माया कर कर हेत बधाए दे पर दर्भ चुराया पुत्र कलत्र ना वसह बहु प्रीत लगाया वेखदिया ही माया तो गई पछतह पछताया जमदर बदे मारी है नानक हर पाया सलोक महला पहला ज्ञान मिहूणा गावै गीत भुखे मुला करे मसीत मखट्टू होए कै कन पढ़ाए

हल्ला पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ है ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे दें दे सुख पाया जो हर नाम त्याई दे तिन तोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम समाया सलोक महला चौथा सतगुर सेवन से वड भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कतंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हठिया वै जाए जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पछाहां जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चल है सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु।

पाई, घर मंदिर गच गीरियां किस साथ ना जाई, सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मनमुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन दुख लागा अत पारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव माया कै ब्योहारी, अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़े गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन्हों मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है बूझै को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।

सहजे सुख सुत्ती शब्द समाए, आपे प्रब मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाए, अंतर नाम बसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसरै झूठे लालच होर पौड़ी, नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवै दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरै खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाउ, नानक नाम मिहूणिया तिन तन खावह काउ पौड़ी, नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से ती रंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हऊ मैं बहुत अहंकार, शब्दै साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै भावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदी न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे पौड़ी, सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे ना चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिखमंड रावणा क्यों तरिय तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मै वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजै पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करह सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहि वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम पौड़ी, लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिले दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दर वज दे

करनी पव कटिय नानक पावे पार महला तीजा सच पराणा ना थीय नाम ना मैला होए गुर कै भाणे जे चल बहुड़ ना आवन होए नानक नाम वसारे आवन जाना दुए पौड़ी मंगत जन जाचे दान हर देहु सुभाए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए सतगुर नाल दिखालिया रल रहिया सब थाए सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए सलोक महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वरत आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन कहो जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया जमकाल निहाले सास आव घटे बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाई। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याएंदे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवंदे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चल है सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग वजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवई अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई तां पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए तां वत लह नौ नित पल्ले पाए। धर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन अनंत भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुखदाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मनमुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेख विकसै मोहि माया। देश परदेश धन चराए आण मोहे पाया। अंत होवे वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके पेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किश चल से मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया गुर का पहु हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई सच न लगे प्यार, गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लय आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै न बिंद, किस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याय, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीह उठा शहबर लाए, सब धरत पई हरियावली अन जमया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए, हर तसै त्यावो संत जन हो जो अंते लय छदाए, हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम अरादया तिन्ना दुख भुख लह जाए, जन नानक तृपतै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए, पौड़ी गुर पूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाइया, हिरदै कवल परगास उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहु है तिस नाल सियाणप ना चलई ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे मन लय रजाए, गुरमुख जम डंड ना लगई हौ मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखी है जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब

मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह। जेह बा स्वादी लीलत लोह, ऐसे कनक कामनी बांध्यो मोह। ज्यों मद माखी संचय अपार, मदलीनो मुख दीनी शार। गऊ बाश को संचय खीर, गला बांध दोहे ले अहीर। माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाडे धरै। अत संचय समझै नहीं मूड, धन धरती तन होए गयो धूड़। काम क्रोध तृष्णा अत जरै,

पूरा दास अनिन मेरो निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रई मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाऊ मेरी बांदी भगत छिडावै।

कामनी भगत नहीं उपजे, भूखे दान ना दीना रहाउ, काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरै अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली, छाड मन हर बे मुखन को

हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख भय निर्भिखे पाए है सगले थोक आन बस्त स्यो काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साध न जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर कर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भय गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख वगासी तौ धन साच शिंगारू अकुल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम अधारू मुक्त भई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पार।

पार। पीतर अमृत सोई जन पावै, जिस गुर का शब्द रत्न आचार। रहाउ दुख सुख दो सम कर जाने, बुरा भला संसार। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई, सत संगत गुर प्यार। एहन सलाहा हर नाम प्रापत, गुरदाता देवन हार। गुरमुख सिख सोई जन पाए, जिसनो नदर करे करतार। काया महल मंदर घर हर का, तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बलाई, हर मेले मेलन हार। मलार महला पहला, कर दूजा।

ना एहो तन जाएगा ना जाहेंगे खंभ पौने पानी अग्नि का संबंध नानक कर्म होवै जपिए कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे आपे परम पलाय कर कर करता आपे वेख जित पावे तित लाए सेवक को एहा

ब्रह्मा बिचन में हिस्सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूकै मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आ

जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हूं मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाउ त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हौं मैं कर्म कमाए साहिब भावे सोथी है पय किरत फराहे सतगुर भेटे मन मर रह हर नाम वसे मन आए तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाए चौथे पद वासा होया सच्चे रह समाए मेरा हर प्रभ अगमे अगोचर है कीमत कहन ना जाए गुर प्रसादी बुझी है शब्दे कार कमाए नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला बूझै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिले शांति उपजै अन दिन नाम लए मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुर पुर

पद परम पद पाया वड्डी वड्याई होई अन दिन गुण गावे नित साचे सच समावे सोई मन रे गुरमुख हृदय विचार तज कूड़ कटंब हउमै बिख तृष्णा चलन।

अंतर वस्या अलख्य पीवा गुरमुख होए न खाई। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवै चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागै सद हर स्यो ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान। इहो मन खिलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवै। जाय आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वस आवै। इस मन की बिद मन हूं जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे आसमाई। एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता। गुर कै शब्द हर त्याई रहाउ मन तन भीजै एक लिव लागै सहजे रहे समाई। गुर प्रसादी भ्रम पौ भागै एक नाम लिवलाई।

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदलै जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उर धार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउमै ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मन मुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपियै सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे।

आई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर कै नाम मुक्त गत पाई। रहाउ माया मोह अज्ञान गुवार, मन मुख मोहे मुग्ध गुवार। अन दिन धंधा करत विहाई, मर मर जम्मह मिले सजाए। गुरमुख राम नाम लिव लाई, कूड़ै लालच ना लपटाई। जो किछ होवै सहज सुभाई।

तारी। सतगुर देख मेरा मन बिगस्यो, जन हर भेट्यो बनवारी। रहाउ जिन ऐसा नाम वसारिया, मेरा हर हर तिसकै कुल लागी गारी। हर तिसकै कुल पर सूत ना करियो, तिस विधवा कर महतारी। हर हर आन मलावो गुर साधु, जिस अहनस हर उर तारी। गुर डीठै गुर का सिख बिगसै, ज्यों बारक देख महतारी। तन पिर का एक ही संग वासा, विच हों मैं पीत करारी। गुरपूरै हों मैं पीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मलार महला चौथा, गंगा जमना गोदावरी सरस्वती। ते करह उदम तूर साधु।

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाई, सत संगत की धूर परी उड नेतनी, सब दुरमत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ। मिला

अगमर गोचर नाम हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलो करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अन दिन हृदय नाम त्यावे है सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप तरे श्रेष्ठ सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभु कृपा तारी बिख डुबदा काढ़ लिया।

जलत अहंकारी हम मैं विच दुख पाई आवत जात बिरता जन्म गवाया दुख लागे पछताई।

आई मलार महला चौथा पड़ताल घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जन बोलत श्री राम नामा मिल साध संगत हर तोर रहाउ हर तन बन जोहो हर तन संचोहो जिस लागत है नहीं चोर चातर कमोर बोलत दिन राती सुन कन हर की कोर जो बोलत है मृग मीन पंखेरु सो बिन हर जापत है नहीं होर नानक जन हर कीरत गाई छूट गयो जम का सब शोर मलार महला चौथा राम राम बोल बोल खोजते बड भागी हर का पंथ को बतावे हौ तां कै पाए लागी रहाउ हर हमारो मीत सिखाई हम हर सिओ प्रीत लागी हर हम गावे हैं हर हम बोले हैं और द्वितीया प्रीत हम त्यागी।

खीर आधार बारिक जब होता, बिन खीर रहन ना जाई, सार संभाल माता मुख नीर, तब ओह तृप्त अघाई। हम बारिक पिता प्रभ दाता, भूलह बारिक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जह जाता रहाउ, चंचल मत बारिक बपुरे की, सर्प अग्न कर मेलै, मात पिता कंठ लाए राखै, आनंद सहज तब खेलै, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारिक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरै, मन बांचै सो लैसी, पिता कृपाल आग्या एह कीनी, बारिक मुख मांगै सो देना, नानक बारिक

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निद छोड़ आन को पूजह, आत्म घाटी हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड़ मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना डार हो प्रभ करते।

त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहा उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी सुन उपदेश भये मन निर्मल गुण गाए रंग रंगी एह मन दे किए संत मीता कृपाल भये बड़ भागी महा सुख पाया बन्ना साको रेन नानक जन पागी मलार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मलाई सगल सहेली सुख पर सूती।

जो प्रिय संग राती ए हम मैं की तिथाई पई निमाणी शरण एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ हम तेरी धर स्वामिया मेरे तू क्यों मनो बसारे।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु तहाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास तुम

जगदीश्वर देखत सदा हजूरे नानक रब रहे हो सब अंतर सर्व रहे आपर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना तारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उधारी रहाओ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जप

अंतरजामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

सुनो जाप दृष्ट तार राखे सब जंत गुण गाव हो नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जान है प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बुलाया मलार महला पंजवा गुर सरनाई सगल निदान साची दरगाह पाईए मान प्रम पौ दुख दर्द सब जाए साध संग सद हर गुण गाए मन मेरे गुर पूरा सलाहे नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाए रहाउ सतगुर जे वडे अवर ना कोई गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए।

भाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे। पाज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा प्रिय की सोभ सहावनी नीकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी। रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत बहु विद रूप दिखावनी नीकी। गिर तार जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जा कै भावनी नीकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर धारे। रहाउ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे। विषम विषम विषम भई अग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही एक तू ही। भगत टेक तुहारी जन नानक सरण द्वारी। मलार महला पंजवा बरस सरसिया गया होहे आनंद सगल भाग। रहाउ संत संगे मन परफड़ै मिल मेघ धर सुहाग। कन घोर प्रीत मोर चित चात्रक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तो मिल।

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरम तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास।

सखाई इस बिन घड़ी नहीं जग दीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ सरवर कमल किरण अकाशी दिग्सह सहज सुपाई प्रीतम प्रीत

दिस बरसै बिन जल प्यास ना जाई, मीन नवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाई, खिन तिल रह ना सकै पल जल बिन, मरन जीवन तिस ताई, तन वांदी पिर देस नवासी, सच्चे गुर पह शब्द पठाई, गुण संग्रह प्रभ हृदय नवासी, भगत रती हर खाई, प्रियो प्रियो करै सबै है जेती, गुर भावै प्रियो पाई, प्रियो नाले सद ही सच संगे, नदरी मेल मलाई, सब मह जियो जियो है सोई, घट घट रहे आसमाई, गुर प्रसाद घर ही प्रगासिया, सहजे सहज समाई, अपना काज सुवारु आपे, सुख दाते गोसाई, गुर प्रसाद घर ही फिर पाया, तव नानक तपत बुझाई, मलार मोहल्ला पहला, जागत जाग रह गुर सेवा, बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे, आच काच धर पाही, इस तन धन का कहो गर्भ कैसा, बिन सतबार ना लागे बबरे, हम मैं गर्भ खपै जाग ऐसा, रहाऊ जय जगदीश प्रभु रखवा।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया सा चैतान, नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण, पूडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा तह मगना चालन हार, जित घर वसै है तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग

गुर शब्द सिंह एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मोख द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी हिंद वरसै धरत सुहावी घट घट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे भाता कार कमाए एक शब्द राचे सच समाए चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं सब मह शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालं जामन मरना दीसै सिर उभो खुदया निंदरा कालं नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जानै कंठे बैठी गुर शब्द पछानै तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जाचै हृदय संभाल रहाउ एक जी कै जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्ब जी किए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत भारी ऊड़ ना साकै पंख पसारी।

हृदय साचा शब्द सुमाल, गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखे उर तार, से दुख आगे जे भोग बलासे, नानक मुक्त नहीं बिन नावे साचे। मलार महला तीजा, अष्टपदिया घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर्म हुए ता सतगुर पाईए, बिन कर्म पाया ना जाए, सतगुर मिले कंचन होइए।

अचार करै विवेक बुद्ध पाई, पुरखै पुरख मलाई, धातुर बाजी संसार अचेत है, चलै मूल गवाई, लाहा हर सत संगत पाई, करमी पल्लै पाई, सतगुर विण किनै ना पाया, मन वेखो हृदय विचार, वड भागी गुर पाया, भव जले उतरे पार, हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार, कृपा करहो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार, मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर, मेटना ना जाय, नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर पाणा पाए, मलार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा, त्रै गुण करे विचार, बिन नावे जम डांड सह, मर जन्मै वारु वार, सतगुर भेटे मुख

हर हर नाम त्याई रहाउ, हरे अपने भाणे सेठे उपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

शब्दे पिर राखिया उरतार, एक पछाण हों मैं मार, सोभा वंती कहिए नार, बिन गुरदाते किन्ह न पाया, मन

कमल परगास, तित काट नामे नाम निवास, हौ मैं भगत करे सब कोई, ना मन पीजे ना सुख होए, कह कह कहन आप जनाई, बिरथी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुर मन पाए, अनदिन नाम रहे लिवलाए, सद ही नाम वेख है हजूर, गुर कै शब्द रहे भरपूर, आपे बख्शे दे प्यार, हम मैं रूप

बिनवंत नानक सरन तिन की, जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की, महला पहला राणी कैलाश।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी न आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया बिन थम्मा गगन रहाई शब्द निशाणिया सूरज चंद पाई जोत समाणिया तीए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाई अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया

राम राजा आया दैंता मारी ताई हुक्म सबाया ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंदै लाए।

हो नानक चूर मरह दोहागनी जिन अवरी लागाने हो। महला दूजा सावण आया है सखी जल हर बर सुनहार नानक सुख समन सोहागनी जिन सह नाल प्यार पौड़ी आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़थू पाए गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिर लेख बिन कलम मसवाणिए सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

साथियों केव रहसी रंग रंग रहया तिन कामणी जिन मन भाउ भाउ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख न हुए महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यों मन भंग पौड़ी दोए तरफा उपाय एक वरतिया वेद बाणी वरताई अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाखां दोए विच धर्म फिर रह बारिया मनमुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी निश्चो दरगाह हारिया गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया से

वरसै लाए झड़ी नानक पाणै चलै कंत कै सो माणे सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघै हथ किश नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह।

सिफत भंडार उथे हाथ ना अपड़ कूक ना सुनिए पुकार उथे सतगुर बेली होवे कड ले अंती वार इना जनता नो होर सेवा नहीं।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा, कलमल होई।

संबाहि जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आई पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लहै मलाई दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिलै ना मिलिया जाई आपे जोड़ विछोड़ै।

जो हर चरणी रहे लिवलाय। ज्यो जल मह कमल अलिप्त है ऐसी बणत बनाई, से सुखिये सदा सोहणे जिन विचो आप गवाय। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाय। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है, जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो, तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए, सहसा मूल ना होवई।

आई नानक तिनका आख्याप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखे।

वरसै कृपा तार नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मरार पौड़ी अतुल क्यों तोलिया बिन तोले पाया ना जाय गुर कै शब्द विचारिय गुण मह रह समाय अपना आप आप तोलसी आपे मिले मलाई तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाय हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाई जगत मुस्से अमृत लुटिया मनमुख बूझ ना पाई बिन नावे नाल ना चलसी जासी जन्म

पाई। नानक जिन को नदर करे ता एहो तन पल्ले पाई पौड़ी। आप कराए करे आप हम कैसे हो करी पुकार। आपे लेखा मंगसी आप कराए कार। जो तिस पावे सो थी हुक्म करे गावार। आप छड़ाए छुट्टी है आपे बख्शन हार। आपे वेख सुने आप सब सह दे आधार। सब मह एक वर्तदा सिर सिर करे विचार। गुरमुख आप विचारी है लग

तू तनी तू सब किसे आपे आप दूजे किस जानी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुद मणि आवा गौण रचाए उपाय।

मुख मोहे गवार जो भुला मंझ मणी कटे पाप असंख नावे एक कणी। सलोक महला तीजा बबीहा खसमे का महल ना जानही महल देख अरदास पाई अपने पाणे बहुता बोले है बोलिया थाई ना पाई खसम।

पौड़ी आपे जगत अपाय कै गुण औगण करे विचार त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह होए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उरतारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार श्लोक महला पंजवां रात ना विहावी।

गुर कह सहज सुपाई मेघ वर्षा दया कर गुड़ी शह पर लाई बबी हे कूक पकार रह गई सुख वसया मन आई नानक सो सलाही।